You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: या फिर दे मुंह चाक के.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट. जबरदस्त हिट.

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: Radio Olive पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो चुके हैं। हम दो धुरंधर साथ साथ पहुंच चुके हैं आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से, कहानियां, खबरें शेयर करने के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताने के लिए। कि वो क्या हो गया एकदम से कशिश्मा
1: मेडम? इतनी एनर्जी पता है किसी भी फूड सप्लीमेंट से नहीं आती, किसी भी ड्रिंक से नहीं आती, सिर्फ आती है वीकेंड की खुशी के साथ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: बस उसी खुशी के साथ, उसी एनर्जी के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं और आप भी इस एनर्जी को रेसिप्रोकेट कीजिए। प्लीज हमें मैसेज कीजिए अपना मोटिवेशन जो है, क्या कहते हैं आप, जुझारू
0: मोटिवेशन वाले मैसेजेस हमें भेज दीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले, अभी के अभी। और उसके साथ साथ हम बता रहे हैं, जैसे कि देखिए वीकेंड है तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, कशिश तो यहाँ पे नाच रही थी 2 मिनट पहले। तो फिर देखिए ये खुशी का जो माहौल होता है, जिंदगी जीने के जो 2 पल मिलते हैं हमें वीकेंड में, उसके लिए हम सब इंतजार करते हैं पूरे हफ्ते में। और मैं यही बार बार याद दिलाना चाहता हूँ कि 4 दिन नहीं है जीने के 2 दिन ही है, बाकी 5 दिन तो हम बस आस लगाए बैठे कि वो 2 दिन आ ही जाए। बट यही है जिंदगी का, क्या कहते हैं, उसूल, तो क्या ही करें, आप गेम को गेम के उसूलों से ही खेलना पड़ता है। तो यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, अपने मैसेजेस को भेज दीजिए हमें तत्काल प्रभाव से, और यही बोलते हैं हम भी आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही नया गाना प्ले करते हैं अदनान सामी की आवाज में, लिपस्टिक लगा के।
1: मतलब आप लिपस्टिक लगा के प्ले करोगे?
0: नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा ना, मैं नहीं लगाता, मैं लिप बाम भी नहीं लगाता।
1: दिख रहा है?
0: हाँ ना, मैं बोलने वाला था, फटे फटे होंठ है मेरे।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Olive, 106.3
1: Radio Olive. Geo Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मैं हूँ सारिका।
5: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
6: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: जो गहरी बात कही गई है इस गाने के बोल में कि मतलब सिचुएशनशिप में क्या ही हो गया, सिचुआपा हो गया, लव करने गए थे लव यापा हो गया।
1: आपकी भाषा में बात कर रहे हैं यार, क्यूटेस्ट गाना एंड ऑल दैट।
0: क्या करे यार, लोग थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं,
1: आपसे इंस्पायर हो रहे हैं
0: यार। ये बता देना फिर कि हो रहे हैं तुमसे, बता दे भी नहीं है मुझे, गेस करना पड़ रहा
1: है। जलता है मजनू।
0: नहीं, अच्छी बात नहीं है। देखो मैं घमंड नहीं दिखाऊंगा, आप लोग दिल खोल के बता सकते हैं कि सुदेव भाई आपने जो उस दिन बोली थी ना बात,
1: यार देखो अगर चीज अच्छी निकलती है तो फिर दी जाएंगे ना आपको
0: यार। अब देखो गाने निकल रहे हैं, अब देखिए एक गाना जो मैंने बहुत टाइम पहले मैंने अपने गर्लफ्रेंड को बोला था कि यार जब मैं तुझसे दूर होता हूँ ना तो बहुत मुझे ऐसा अजीब अजीब लगता है, गजेंद्र वर्मा ने गाना बना दिया। देख रहे हो, इंस्पिरेशन देख रहे हो। 11वीं क्लास में था उस टाइम पे मैं, ठीक है। उसके बाद अब ठीक है, गजेंद्र भाई का समझ सकते हैं, होता है कोई बात नहीं, दिल्ली में घूमते थे इधर उधर, कहीं ना कहीं सुन लिया होगा। मैं तो भाई चकित रह गया था जब अली भाई ने मेरे बोल सुने और उन्होंने खुद का गाना बना दिया।
2: नहीं मालूम मुझको क्या जगह थी वो जहां मैं था, थी मैं फिर रक्स में मस्ती।
0: ये स्कूल से ट्रिप में गए थे हम एक बार मनाली में,
1: अच्छा,
0: और चलते चलते मैं रास्ता भटक गया था, तो मेरे पास फोन था नहीं, मैं कैसे ना कैसे वापस पहुंच गया। मेरे से पूछा कहाँ गया था, मैं नहीं मालूम मुझे कौन सी जगह थी वो।
1: आए हाय वाह,
0: वहीं से बना दिया यार उन्होंने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपसे इंस्पायर हो क्या, आपसे इंस्पायर हो के तो इसके बाद गूगल मैप्स बने हैं।
0: मगर मेरा दिल तब टूटा जब मैंने अपने बहुत ही खास इंसान से बोला था कि तेरा मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मुस्तफा भाई उसका गाना बना दिए,
1: खुद 14 साल पुराने होने के बाद आपने ये बात बोली थी।
0: बिल्कुल भी नहीं, मैं देखिए मैं शायद फिजिकली 14 साल पुराना था बट मेरा जो आशय था,
1: आय हाय आय हाय हाय, और बस वो आशय के चलते, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तो बहुत ही छोटे होंगे जब ये गाना बना होगा।
0: बहुत ज्यादा ही छोटा था मैं जब ये गाना निकला था, 2003-2004
1: मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी देखो।
0: बट यार देखिए बात तो है, जो भी है हमसे छीनी गई हो ना गई हो कोई बात नहीं, माफ कर दिया मैंने मुस्तफा भाई को, अली भाई को, गजेंद्र भाई को, कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे आए हैं मैसेजेस, चलिए वो पढ़ते हैं। मोहम्मद आमिर भाई का मैसेज आया, या ये इतना बढ़िया एक एक्साइटेड गुड मॉर्निंग लिखा है उन्होंने, मजा आ गया पढ़ के। और लिखा है विश यू हैप्पी वीकेंड सुदेव एंड कशिश जी करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और कमरुनिसा जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने देखो 3 मैसेज भेजे हैं। गुड मॉर्निंग सुदेव एंड कशिश, हमारे घर की रोशनी हमारी खुशी का नाम।

0: तुझे अपनी हिफाजत में रखे, जन्मदिन मुबारक हो हादी।
1: यस, सो हादी मेरा कजन ब्रदर है एंड आज उसका बर्थडे है। सो कल मुझसे बोला गया था कि रेडियो पे विश कर देना, मैंने बोला आप मैसेज कर देना तब हम करेंगे। ऑफिशियल वे से आइए प्लीज।
0: जी जी जी, ओनली ऑफिशियल चैनल से, ठीक है। मेल कर देना, लिख लीजिए सुदेव एट ऑलिव डॉट की। तो यहाँ पे हादी भाई, थैंक यू सो मच। हादी भाई की मम्मी ने मैसेज भेजा।
1: हाँ, हादी भाई की मम्मी ने मैसेज भेजा है।
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज भेजने के लिए, और आपको भी काफी बढ़िया बर्थडे जो है मैं विश करता हूँ। देखिए बर्थडे एक स्पेशल दिन होता है जब हमें पता चलता है कि कितने लोगों के दुआओं में हम रहते हैं।
1: yes.
0: कितने लोगों के कदर में हम रहते
1: yes,
0: हैं
1: और कितने लोगों की स्टोरी मेंशन में हम रहते हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: अभी
0: बिल्कुल।
1: तक शेयर नहीं करी है भाई आपने हमारी स्टोरी, ठीक है।
0: कोई
1: देख रही हूं मैं।
0: कोई गल
1: 12 बजे शेयर हो गई थी मेरे से।
0: कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। सारे स्टोरी का रिप्लाई एक साथ दे देना। और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया, उन्होंने लिखा है कि और इस खास मौके पर हम डेडिकेट करना चाह रहे हैं एक बहुत ही इमोशनल और दिल को छू लेने वाला बॉलीवुड सॉन्ग, तू जो मिला बजरंगी भाईजान से। वाह वाह वाह, गाना हम जरूर लगाएंगे। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हादी भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है अली भाई वेट कर रहे हैं।
1: yes.
0: गजेंद्र भाई वेट कर रहे हैं।
1: हमने प्लेलिस्ट जो है वो सुदेव के हिसाब से सेट कर ली थी।
0: जी हाँ, मतलब ये मेरे से इंस्पायर होकर इन्होंने जो गाने बनाए हैं उसके बारे में। और एक और मैसेज भेजा है, लिखा है वीकेंड आया है जनाब, थोड़ा मुस्कुराइए वे साहब, काम की टेंशन को कीजिए साइड, खुशियों को साथ कीजिए, खुशियों के साथ कीजिए वीकेंड एंजॉय वाइड। वाओ, मैं लास्ट वाला वर्ड समझा नहीं।
1: वाइब होगा,
0: वाइड लिखा है, वाइड एंजॉय वाइड, कोई बात नहीं। हाँ। मैं एक्चुअली बहुत टाइम बाद ऐसे हिंदी पढ़ रहा हूँ तो उसकी
1: yes, मैं वाइब समझ गई हूँ। देखिए वाइब है, वाइब है, वाइब है, वीकेंड है, वाइब एंजॉय करनी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मोहम्मद अरमान भाई का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग करके। उसके साथ साथ मुझे संधु जी का मैसेज आया है, संधु जी ने अभी मैसेज किया है, लिखा है गुड मॉर्निंग ब्रो हरपाल, संधु फ्रॉम दुकान। हरपाल जी की हालचाल बताइए, कैसा चल रहा है? गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा आपने, थैंक यू सो मच। और वीकेंड के क्या प्लान है जरा डिटेल में बताइएगा। शबी अमीर का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू आजय कशिश जी एंड सुदेव भाई, होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड जियो बिंदास, थैंक यू सो मच ब्रो, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जो है मैं विश करता हूँ। और एक और मैसेज आया कशिश्मा मैडम हमारे पास, यहाँ पे जो है इमरान भाई ने मैसेज किया है, लिखा है गुड मॉर्निंग करके, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको
1: गुड मॉर्निंग।
0: और मुझे एक और मैसेज आया है ऋषिन का, ऋषिन ने लिखा पीस डजंट कम फ्रॉम द प्लेस यू गो, इट कम्स फ्रॉम द माइंड यू कैरी, गुड मॉर्निंग। प्यारी बात कर दी आपने, बहुत प्यारी बात। अबरार भाई का मैसेज आया है, अबरार भाई ने लिखा है यहाँ पे गुड मॉर्निंग और एक फूल का फोटो भेजा है हमें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। जुल्फी भाई का मैसेज आया है, जुल्फी भाई ने लिखा है गुड मॉर्निंग, अ सिंपल लाइफ इज अ ब्यूटीफुल लाइफ।
1: यस,
0: बिल्कुल सही बात, मैं भी
1: सिंपलिसिटी में ही बिलीव करती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बैग कौन सा आपका,
1: क्या
0: है नहीं, टैब कौन सा रखा है आपने?
1: मैं सादा डोसा खाती हूँ बाहर जाके, बताया आपको।
0: अच्छा, बेड़े
1: डोसा भी मसाला वाला नहीं खाती मैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ जाते हो वैसे डोसा खाने के लिए?
1: मैं कहीं भी खा लेती हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप लोगों के पास कुछ अच्छा सजेशन है तो प्लीज बता दीजिएगा हमें।
0: जी बिल्कुल।
1: यस,
0: शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया, नेवर लिमिट योर सेल्फ, वी लिव इन अ लिमिटलेस वर्ल्ड विद एंडलेस पॉसिबिलिटीज, नेवर से यू कांट एंड नेवर गिव अप, गुड मॉर्निंग करके। ये जुजारू मोटिवेशन जिसकी बात हो रही थी, बिल्कुल सही बात करिए शशिकांत पाटिल जी, थैंक यू सो मच। और आपको भी काफी बढ़िया दिन हम विश करते हैं। और नाजनी जी का मैसेज आया है, लिखा है यू आर केपेबल स्ट्रॉन्ग एंड अनस्टॉपेबल व्हेन यू पुट योर माइंड इनटू इट, गुड मॉर्निंग करके, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू सो मच।
0: इतनी तारीफ तो सही बात में मम्मी ने भी नहीं करी मेरी कभी।
1: उन्होंने तारीफ नहीं करी, उन्होंने बोला है कि दिमाग से काम लीजिए प्लीज।
0: अच्छा वैसे,
1: हाँ
0: तो फिर कशिश के बारे में बात करी थी। तो गाइस यहाँ पे गाना सुनते हैं।
1: अली भाई इंतजार कर रहे थे।
0: अली भाई तो थोड़ा इंतजार करेंगे, मगर गजेंद्र भाई बोले कि अच्छा। भाई छोटा गाना है मेरा, प्लीज प्ले कर दो।
1: यस।
0: तो गजेंद्र भाई ठीक है, आगे आ जाओ। कूल सॉन्ग प्ले कर रहे हैं आपको, तो कूल सॉन्ग ऑफ द आवर में सुनते हैं गजेंद्र वर्मा का एक बहुत ही प्यारा गाना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास।
2: कूल सॉन्ग। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
2: Cool song.

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: नया लुक, नया फील. कारफोर विला जियो आ गया है और भी फ्रेश. अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग. विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस.
2: 14 से 16 मई तक विला जियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज.
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विला जियो. कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर. टीएनसी अप्लाई.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई स्टेशन क्लॉक में 6:33 हो रहे हैं। वक्त हो चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का।
2: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: तो देखिए, आज का सवाल दिल से रिलेटेड है।
3: दिल का दरिया बह गया।
0: नहीं, गाने के बारे में नहीं है, तो पता नहीं मैंने क्यों किया ये। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, बस मन किया क्योंकि क्यों नहीं।
1: देखिए, हमारे पास सुदेव है, ये कुछ भी कर सकते हैं
0: जी, कभी भी कहीं भी कुछ भी।
1: यस, पर जल्दी जल्दी सवाल जो है,
0: सवाल बहुत ही सिंपल है। सवाल ये है कि
1: ऑक्टोपस
0: के पास कितने दिल हैं? कितने दिल हैं ऑक्टोपस के पास? आपको बताना है 3311063 पर मैसेज करके। ऑक्टोपस के पास कितने दिल हैं? हाउ मेनी हार्ट डज एन ऑक्टोपस हैव? बताइए हमें। आप ऑडियो नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं 3311063 पर। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी देखते हैं कि आप पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और कशिश से कितने तेज हैं।
1: हो ही नहीं सकता।
0: क्या आप तैयार हैं? अगला गाना सुनते हैं मुस्तफा जाहिद की आवाज में ब्लड मनी से।
4: गुना किया दिल मैंने यार का तोड़ के।
0: मगर आपके पास अगर मल्टीपल दिल है तो क्या ये गुनाह माफ होगा? तो बताइए इस सवाल का सही जवाब जल्दी जल्दी।

0: Radio Onyx, your happiness frequency. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिस्निंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: आवारापन मूवी का गाना हमने सुना मुस्तफा जायद की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव,
1: मैं हूँ आपकी कशिश।
0: तो भाई यहाँ पे जो है सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले हमने कि ऑक्टोपस के पास कितने दिल होते हैं, और हमारे पास जो है मैसेजेस आए हैं, क्या हो गया?
1: अच्छा, वो ऑक्टोपस का पूछा, आपका नहीं पूछा, वरना आपके पास तो फिर बोल देते कि नहीं है, क्योंकि जब होता है तो किसी ना किसी को दे देते हो।
0: देखिए, मैंने अपने एक फ्रेंड से बोला था, ऐसी बात करते करते वो मेरी टांग खींच रहे थे, तो मैंने बोला कि एक ही दिल है, कितने बार तोड़ोगे?
1: हाँ।
0: तो बोले कि बचा है कुछ वहां पे,
1: ऑब्वियसली।
0: बट नहीं, बचा तो है, जरूर बचा है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार, बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे है। मगर हम यही बताना चाहते हैं कि आई वियर माई हार्ट ऑन माई स्लीव।
1: यार मैं एक और बात सोच रही थी, आंसर हम जाने उससे पहले एक और बात बताना चाह रही थी मैं, सिर्फ फालतू की बात है, कोई इसका सेंस नहीं है कि सोचो हमारे पास एक ही दिल है और उसके बाद भी हमें कितनी कोलेस्ट्रॉल की जो है फिक्र होती है। तो अगर ऑक्टोपस के पास एक से ज्यादा दिल है तो उसको कितनी टेंशन होती होगी ना।
0: मुझे लगता है उसके तीन है, इसलिए वो खुश है कि एक गया तो भी है, दो टेंशन नहीं, अपने को तो जाए।
1: जैसे हम किडनी के साथ चल रहे
0: हैं। बट भाई ऑक्टोपस तो काफी बढ़िया आशिक होगा मुझे लगता है। ऑक्टोपस की जो पूरी जनता
1: होगी, एक तो आठ हाथ,
0: आठ हाथ, तीन दिल, ऐसे कैसे हो सकता है? बट यहाँ पे जो है हमारे पास मैसेज आया आदनेया का, जरा सुनते हैं।
2: गुड मॉर्निंग रेडियो ऑलिव, माय नेम इज आदनेया एंड आई स्टडी इन सिक्स्थ ग्रेड। द आंसर फॉर टुडेस क्वेश्चन इज ऑक्टोपस हैज 3 hearts।
0: Wow, thank you so much आदनेया मैसेज करने के लिए। और यहाँ पे आदनेया ने एक और चीज लिखी है कि आई फाउंड आउट व्हेन आई वाज 8 व्हाइल वाचिंग फाइंडिंग नीमो करके। बहुत बढ़िया। देखिए कभी कभी ना कार्टून से भी, मूवी से भी जो है कुछ नॉलेज मिल जाती है बच्चों को।
1: yes.
0: तो कभी कभी देखने देना चाहिए, ऐसा हाँ, नहीं कि तुम ये थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम चलता है, थोड़ा yes. थोड़ा थोड़ा मीनिंगफुल चीज देखने के लिए, थोड़ा थोड़ा शार्क टुटू में कुछ नहीं रखा मगर भाई कुछ तो लोचा
1: ये तो है। खैर आपके दिल की जो प्रॉब्लम है वो बोल रहे हैं आपको, जो है लल्ला लल्ला लोरी जो है वो बोल के
0: नहीं,
1: वो करा गया था,
0: हम लल्ला लल्ला लोरी
1: आपको शाक, ओ बेबी शाक, बेबी शाक, इससे प्रॉब्लम है।
0: नहीं, हम लल्ला लल्ला लोरी नहीं सुनते थे, हम कुछ और सुनते थे, वो मुझे याद नहीं एक्चुअली। और यहाँ पे कमरुनिशा जी का मैसेज आया, लिखा है ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, दो दिल गिल्स तक खून पहुंचाने का काम करते हैं और एक दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है। वाह यार, क्या हम बेचारे का मजाक बना रहे थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमें पल्लव जी ने भी मैसेज किया है, उन्होंने बोला सुप्रभात आप दोनों को, ऑक्टोपस हैज 3 हार्ट्स, पल्लव शर्मा करके, थैंक यू सो मच जी। अबरार भाई का भी मैसेज आया, उन्होंने वीडियो भेजा था जो लोड नहीं हो रहा, बट शहजाद भाई ने भी मैसेज किया है, उन्होंने भी बोला है कि 3 हार्ट्स करके। तो आप सभी ने सही जवाब दिया है, इसलिए आपके लिए यहाँ बजेंगी तालियां। तो चलिए इसी खुशी में आगे बढ़ते हैं, विशाल मिश्रा की आवाज में सुनते हैं दो दीवाने शहर में मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना। Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: See you in this.

0: आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM। जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: अब मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे कि मैं फेंक रहा हूँ।
1: yes,
0: मगर सही में एक बार ऐसा हुआ था, मैं खाना खाने गया था, ठीक है, पंजाब में गया था मैं खाना खाने के लिए ऐसे घर वालों के साथ। तो मुझे ये शाही पनीर, दाल मखनी,
1: हाँ।
0: बटर नान, ये सब बहुत पसंद है। तो मेरे से पूछे काफी है, मैंने मेरे लिए काफी है, मैंने उनसे मेरे तुम काफी हो भाई, काफी है। तो ये बगल वाले चेयर में बैठा हुआ था आयुष्मान,
1: अच्छा
0: सुन लिया उसने, देखो गाना बना दी।
1: ओहो देखिए मैं तो इस गाने से रिलेट नहीं करती। अब
0: मैं तो बहुत रिलेट करता हूँ।
1: मैं नहीं करती क्योंकि मेरे लिए तो आप चाय हो ना।
0: अरे
1: तो मैं पीती नहीं।
0: क्या बात कर दी,
1: चाय इज इम्पोर्टेंट।
0: क्या बात कर दी, क्या बात बहुत बड़ी बात कर दी इतनी छोटी उम्र में, इतनी गहरी बात, मतलब कैसे हो ये हो गया, कैसे हुआ?
1: आपके साथ रहने का ऐसा नतीजा है
0: ये? तो देखिए संगत का असर तो बहुत अच्छा ही हुआ है, थोड़ा तनीषा के साथ कम घुमा करो और अच्छा हो जाएगा।
1: उन्होंने सुन लिया ना तो पूरे इनके भाव बदल जाएंगे देखना फिर।
0: अरे कहाँ डरते हम, ऐसे ऐसे डरने वाले हैं नहीं, ठीक है। हमारे घुटने नहीं कांपते इतनी जल्दी।
1: अभी अभी बोलते बोलते कांप रहे।
0: बिल्कुल ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे अभी के टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। अभी जो है 34 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है, आज का हाईएस्ट जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। हवा जो है 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और यहाँ पे मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा हमें उड़ा के तो नहीं ले जाएगी?
1: ये हवा तो अब हमें उड़ा के ले ही जाए क्योंकि वीकेंड है देखो।
0: क्या बात। आप इसी बात में फोटोज भेज दीजिए जरा तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी बाहर के नजारे हमें दिखाइए, बताइए सूरज कैसा है और आसमान कैसा लग रहा है, अच्छे अच्छे वॉलपेपर वाली फोटोज जो है हमें क्लिक करके भेज दीजिए। और यहाँ पे हम देखते हैं उसके साथ साथ रुना लैला और भूपिंदर सिंह की आवाज में एक रिप्राइज वर्शन सुनते हैं दो दीवाने शहर में। अब मैं इस गाने के बारे में तो बोल नहीं सकता, तो मेरे गाने के बहुत पहले आया था ओरिजिनल वाला। तो गाना एंजॉय करते हैं और कहते हैं
1: जी अविंदर
2: दीवाना।

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैशबैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Manwal Kapoor. Radio Olive, you're
4: with us. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio.

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: बेनी दयाल की आवाज में सुना हमने बेफिक्रे मूवी का टाइटल ट्रैक। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: क्या हो गया कशिश मैडम?
1: बस मैं सोच रही हूँ कि हर गाने को आपसे किस तरीके से कनेक्ट करूंगी, आपसे इंस्पायर होकर बनाया।
0: नहीं, ये गाना मेरे से इंस्पायर नहीं है, मैं बेफिक्र जीता ही नहीं हूँ, मैं तो बहुत फिक्र करता हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, तो हम बात पर आते
1: हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस।
0: इदरीस भाई ने भाई फोटोज भेजे हैं, बहुत सारे बढ़िया वाले, एकदम बहुत ही मस्त। उन्होंने लिखा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम भाई, गुड मॉर्निंग। और काफी प्यारे प्यारे फोटोज भेजे हैं उन्होंने, वॉलपेपर वो दी, इवन इस बिल्ली का एक फोटो भी भेजा मुझे, देखिए।
1: वाओ, क्यूट।
0: थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा। और उसके साथ साथ सामी भाई का मैसेज आया है, सामी भाई ने भी हमें फोटोज भेजे बहुत ही प्यारे वाले, और उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई और कशिश, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, हाल तो बिल्कुल वदिया, तुसी दसो कैसा चल रहा है सब कुछ?
1: बस झेल रहे हैं सुदेव को।
0: अरे अरे, कशिश को झेला नहीं जा सकता वैसे, एटलीस्ट मुझे झेला जा सकता है,
1: मैं अनझेलेबल हूँ।
0: और यहाँ पे जो है मुझे एक और मैसेज आया है असलम तहसीलदार से, उन्होंने भी मैसेज किया है, लिखा है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड सॉन्ग, थैंक्स करके। अरे सर क्या करे,
1: बस
0: कोशिश करते हैं हम, बस कोशिश। और अभिषेक आनंद का मैसेज आया, उन्होंने लिखा है 34°3+4=7 ताला फॉर रीजन।
1: ओह माय गॉड, अपनी टीम बना रहे हैं सदैव यहाँ पर
0: भाई। अभिषेक आनंद भाई, आप मेरे टीम के बंदे हो, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी टेंशन हो तो बता देना, मैं भी साथ में ले लूंगा। और यहाँ पे एक और मैसेज आया है मनोज भाई का, मनोज भाई ने वेस्ट बे कॉर्नर सिग्नल का एक बहुत ही बढ़िया व्यू दिया है, क्या मस्त फोटो खींच रखी है,
1: मतलब मजा आ गया,
0: बहुत ही प्यारी फोटो।
1: मुझे ना ऐसा लग रहा है कि हमें एक एग्जीबिशन रखना पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: जहाँ पर हमें ये सारी पिक्चर्स को जो है फीचर करेंगे, एंड मस्त, क्योंकि अलग अलग कलर देखने को मिल रहे हैं ना, कतर के अलग अलग तरीके का स्काई देखने मिल रहा है
0: जी। बहुत ही प्यारे फोटोज भेजे आप सभी ने, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और इसी खुशी में काम करते हैं, जबरदस्त हिट्स प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद गानों के उस पार जब हम आएंगे,
1: तो किसकी बात करेंगे?
0: हेल्थ की बात करेंगे,
1: इम्पोर्टेंट बातें करना, यानी
0: काफ मसल्स के बारे में बात करेंगे, काफ मसल्स के बारे में। तो यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी अविनाश,
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: द बिग biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे जो है हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है आपके साथ शेयर करना चाहेंगे फिटनेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है, फिट है तो हिट है।
0: और यहाँ पे भाई फिट है तो हिट है में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे हमारे काफ मसल्स के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग काफ मसल्स सर्कुलेशन को कैसे सपोर्ट करते हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। पहले ही बता दूं कि काफ मसल्स को जो है सेकेंड हार्ट भी बोला जाता है। हाँ, जब हम चलते हैं, स्टेज यूज करते हैं या इवन टिपटो मूवमेंट करते हैं तो काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेन्स को जेंटली स्क्वीज करते हैं। ये एक्शन ब्लड को लेग से वापस हर्ट की तरफ पुश करने में हेल्प करता है। क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ब्लड लोअर बॉडी में कलेक्ट हो सकता है, तो काफ्स का ये पंपिंग मैकेनिज्म सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रांग और एक्टिव काफ मसल्स का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ब्लड पूलिंग कम हो, स्वेलिंग और हैवीनेस रिड्यूस हो और लॉन्ग सिटिंग के इफेक्ट्स को थोड़ा काउंटर कर सके। इसीलिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल में मूवमेंट कम होने पर लेग्स हैवी फील हो सकते हैं, सर्कुलेशन स्लगिश फील हो सकता है। तो सिंपल एक्टिविटीज करने हैं जैसे कि वॉकिंग, काफ रेजेस, एंकल मूवमेंट, स्टेयर्स क्लाइंबिंग। तो अगर आपका काफ पंप जो है वो एक्टिव होगा तो हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए एक स्टेप आप क्लोजर जाओगे। तो शॉर्ट में बात ये कि काफ सिर्फ वॉकिंग मसल्स नहीं है, ये ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करते हैं और बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो एक अच्छे फ्लो में रखते हैं।
2: यानी तो अभी तक अंडर एस्टिमेट कर रहे थे हम काफ को बहुत ज्यादा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा केदार भाई के बारे में। केदार भाई ने भेजा एक फोटो मुझे कल के शाम के सनसेट का और मॉल सिग्नल के पास का एक फोटो है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ मुझे रवि भाई ने भी फोटो भेजा है, उन्होंने मिया पार्क के पास एक फोटो भेजा है। यस, बहुत ही बढ़िया फोटो है। देखो यार, ये अगर आप यहाँ पे नहीं गए तो जरूर जाना, म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट्स, बहुत ही प्यारी जगह है।
2: मैं गई हूँ बट मैंने रात में देखा है। अच्छा। इतनी खूबसूरती मुझे दिख नहीं पाई थी, बट क्या बढ़िया चीज है ना कि हम यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे कतर का कोना कोना देख पा रहे हैं।
0: यही तो एक खुशकिस्मती है हमारी कि हम इस चार दीवार के अंदर बैठकर भी आसपास की दुनिया में काफी एक्टिवली इन्वॉल्व है। और यही बात बताते हुए शाहिद माल्या और श्वेता की आवाज में सुनते हैं मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी का गाना।
2: आए हाय,
0: Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
2: जी अविनाश।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे जो है एक बहुत ही बढ़िया अपडेट हम देना चाहेंगे आपको। दोहा इंटरनेशनल बुक फेयर का 35th एडिशन आज से दोहा एक्सिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में शुरू हो जाएगा और ये जो है 23 मई तक चलेगा। इस साल फेयर अब तक का सबसे बड़ा एडिशन है। यहाँ पे 910 स्टॉल्स हैं, 18.5 लाख बुक्स हैं, 2.31 लाख टाइटल शोकेसेस किए जाएंगे और 37 कंट्रीज के 520 पब्लिशर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
1: अमेजिंग यार, और साथ में 143 न्यू बुक्स जो हैं वो भी लॉन्च होने वाली हैं और सेमिनार्स, वर्कशॉप जैसे पैनल डिस्कशंस जो हैं वो भी यहाँ पर होने वाले हैं। यानी सिर्फ बुक फेयर नहीं है ये कोई ऑर्डिनरी सा, बहुत कुछ अमेजिंग होने वाला है। बच्चों के लिए भी बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है। दोहा चिल्ड्रन जोन जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें बहुत सारी इंटरक्टिव एक्टिविटीज और परफॉर्मेंसेज जो है वो बच्चों के लिए होंगी, ताकि यंग रीडर्स में जो है रीडिंग हैबिट जो है वो प्रमोट हो गई ना कहीं। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ऑर्गेनाइज हो रहा है ये वाला जो फेयर है एंड काफी बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो बन चुका है, जहां पे राइटर्स, ऑथर्स, इंटेलेक्ट दुनिया भर से आ रहे हैं। सो यार देखो, मैं तो जा रही हूँ एंड अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं तो
0: मेरा
1: आप
0: पास बन गया मैं भी तैयार
1: तो सुदेव आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे क्या?
0: बिल्कुल बिल्कुल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दोनों तो जरूर जाएंगे वहां पे, आप भी चेकआउट कीजिएगा। और इसके साथ साथ यही बोलते हैं, हम भी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में ऑलिव अपडेट्स में बाकी खबरें सुनाएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जी अविनाश।

0: बेहतर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
0: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
3: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैशबैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Hi, Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh.
2: Radio. Stay tuned. Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm a number one. Abu Hogi, Abu Hogi. Bindas Morning.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: शुभ मंगल ज्यादा सावधान मूवी का गाना सुना हमने। और यहाँ पे कशिश से एक ही सवाल पूछना है मुझे कि आज तो बहुत खुश हो गए तुम।
1: क्या करे, अब मेरी टीम मुझे खुश होने का मौका दे रही है तो क्या कर सकते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। वैसे बताना ही पड़ेगा यार इस मामले के बारे में तो। कल बैंगलोर ने क्या खेला,
1: क्या खेला है,
0: क्या बढ़िया
1: क्या खेला है।
0: और स्पेशली विराट कोहली ने भाई अलग लेवल का गेम जो है
1: मतलब पिछला
0: है।
1: मैच जो मैंने बैंगलोर का देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि एब्सोल्यूट सिनेमा। हाँ। इससे बढ़कर एक मैच में क्या हो सकता है। वो जो दो रन भाग के लिए गए थे बैंगलोर के द्वारा, लेकिन जो कल कोहली ने अपनी सेंचुरी पूरी की है और जो स्वैग दिखाया है, मतलब रीले कटी है, रीले वर्दी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो टीम है ये जीतने के लिए तो खेलती ही है लेकिन साथ में रीलों के लिए भी खेलती है। यार एक आध अच्छी रील जो है वो अच्छा निकल जाए और कुछ नहीं होता तो फिर बस 21 जो है वो विराट कोहली जो है स्टैंड दे देते हैं, अनुष्का भाभी को दे देते हैं बस।
0: बट इस मैच की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट इनिंग्स में कोलकाता ने काफी अच्छा टारगेट रखा।
1: yes.
0: 192 स्कोर किया उन्होंने 20 ओवरों में, चार विकेट्स उनके गिरे थे। और यहाँ पे अगर हम बैंगलोर की बात करें तो 194 उन्होंने स्कोर किया, जिसमें विराट कोहली ने 60 बॉलों में 105 रन स्कोर किए। देवदत्त पडिक्कल ने जो है 27 बॉलों में 39 रन स्कोर किए। और अगर हम स्कोर कार्ड थोड़ा डिटेल में अगर हम देखें तो अलग लेवल का परफॉर्मेंस जो है इन दोनों के साइड से आया, स्पेशली कोहली के साइड से। बहुत ही बड़ा टारगेट है और आराम से उन्होंने अचीव भी कर लिया था। और अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में किसी ने भी 50 रन स्कोर, हाँ बस अंक कृष रघुवंशी को छोड़ के बाकी किसी ने 50 रन का मार्क्स को सरपास नहीं किया,
1: पास नहीं किया। बट फिर भी बहुत अच्छा खेला है मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंगलोर की जगह कोई ऐसी थोड़ी सी कमजोर टीम होती तो उसमें कोलकाता की जीतने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते।
0: काफी अच्छा मैच जो है देखने को मिला। खास बात यह कि पिछले दोनों मैचेस में कोहली जो है जीरो में आउट हुए थे, डक हुए थे, और तीसरे मैच में आके उन्होंने सेंचुरी मार दिया। तो हम यही बात कर सकते हैं कि या फिर यही हम पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई कोहली को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंदा अलग लेवल का है। जितना हम उस पर टॉन्ट करेंगे, जितना हम उसको छेड़ेंगे, उतना पावरफुल तरीके से जो है वो वापस उभर कर आएगा।
1: और हम कल ही बात कर रहे थे कि प्लेयर बुरा या अच्छा नहीं होता, उसका फॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, सिचुएशन जो है वो मैटर करती है कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं। सो उस पिच पे मुझे लगता है कि वो अच्छा खेल गए एंड शायद इस टाइम पे जरूरत भी थी टीम को कि कोहली जो है वो अच्छा खेलें ताकि सबका जो मनोबल है। हाँ, देखिए मैं भारी भारी शब्द लेकर आई, मनोबल जो है,
0: टेबल एक साइड झुक गया, इतना भारी शब्द बोल दिया इन्होंने,
1: मनोबल जो है वो बना रहे एंड बस इसी मोटिवेशन की थोड़ी जरूरत होती है, फैंस को भी थी एंड टीम को भी थी। सो बढ़िया रहा। पॉइंट टेबल का जो हाल है,
0: पॉइंट टेबल का हाल काफी बढ़िया हो चुका है। बैंगलोर टॉप पर है, 12 मैचेस खेले उन्होंने जिसमें से 8 वो जीते हैं, 16 पॉइंट के साथ वो टॉप पर है। पीछे उनके जस्ट पीछे ही गुजरात है, सेम पॉइंट्स है बट रन रेट का फर्क है, इसलिए गुजरात जो है वो सेकंड पोजीशन पर आया है। हैदराबाद जो है थर्ड पोजीशन पर है, 14 पॉइंट्स है हैदराबाद के। पंजाब फोर्थ पोजीशन पर है, 11 मैचेस खेले हैं, 13 पॉइंट्स है पंजाब के पास। और चेन्नई जो है फिफ्थ पोजीशन पर है, 12 पॉइंट्स है, 11 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं। तो पंजाब और चेन्नई का जो है इधर उधर का मामला है। मैं कहता हूँ कि भाई पंजाब आगे सारे मैचेस हार जा रहे
1: हैं, इस पर बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में, क्योंकि आज मैच जो है वो भी ऐसे ही किसी टीम का।
0: अरे अरे अरे अरे, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी ओबिंदास
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात है

0: विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: मेरे यार की शादी है, एक्चुअली मेरे यार की शादी है जून में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: स्टूडियो क्लॉक में 8:33 हो रहे हैं और यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे आज के मैच के बारे में। आज क्या होने वाला है मैचेस में, आज कितने मैच होने वाला, एक ही मैच होने
1: आज
0: वाला
1: एक
0: है,
1: एक ही मैच होने वाला है पंजाब और मुंबई के बीच में।
0: क्या बात कर रहे हैं। मैं पहली बार चाहता हूँ कि मुंबई जीते ये मैच। जीतो भाई जीतो।
1: यार देखिए आप ऐसे सेल्फिश नहीं हो सकते अपनी टीम के लिए।
0: मैं मुंबई के लिए सेल्फिश हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मुंबई जीते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मुंबई जीते आप चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे जो है फोर्थ पोजीशन पे इस वक्त पंजाब चल रही है, फिफ्थ पोजीशन पे चेन्नई चल रही है। सो अगर पंजाब ये वाला मैच हारती है तो चेन्नई को ऊपर आने का मौका मिल जाएगा, यानी किसी की हार से किसी को फायदा होगा।
0: देखिए ये तो उसूल है, जिंदगी का उसूल है, कुदरत का उसूल है। कहीं ना कहीं जब पत्ते गिरते हैं पतझड़ में, उन्हीं उस झड़े हुए पत्तों से किसी ना किसी का तो भला हो ही जाता है।
1: रुकिए चलिए फिर चैट जीपीटी से पूछते हैं कि आज वो क्या कह रहे हैं कि कौन जीतेगा, आपकी साइड है कि नहीं है। ओके
0: आज भाई
1: एक्सपेक्ट हाई स्कोरिंग गेम। धर्मशाला एल्टीट्यूड यूजुअली फेवर्स द बैटर्स एंड विद पंजाब पॉइंट्स अगेंस्ट ऑलरेडी एलिमिनेट। ओके पंजाब की जीतने के फुल चांसेस कह रहे हैं।
0: देखिए 54% चांसेस कह रहे हैं पंजाब के, मुंबई के 46% है। मैं आज तो भाई ऐसी दुआ करने वाला हूँ कि धर्मशाला में वो क्रिकेट के पिच में तक मुंबई मुंबई मुंबई की आवाज आएगी। बट यार देखते हैं। मैं चाहता हूँ जो अच्छा क्रिकेट खेले वो जीते, एट द एंड ऑफ द डे वो मैटर करता है।
1: हमारी ये ऐसे मस्ती तो चलती रहेगी
0: जी बिल्कुल,
1: बट ना क्रिकेट जो है वो जीतना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी बात कर दी आपने कशिश मैडम। मतलब इतनी छोटी उम्र में इतनी भारी बात, और भारी बात करोगे टेबल पलट जाएगा।
1: पर उस साइड आप बैठे हो टेबल के ऊपर।
0: नहीं आप मुझे वेट शेम कर रहे हैं, मैं टेबल के ऊपर चेयर पे बैठा हूँ।
1: आपकी बातों के वजन की बात कर रही हूँ कि उस सर हमेशा मैं देखिए कितनी भी हैवी बातें कर लूं, लेकिन मैं सुदेव से ज्यादा हैवी बातें तो नहीं कर पाऊंगा।
0: लोग
1: स्पेशली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सुदेव भाई आज क्या हो गया, इतनी फिलोसफी,
0: इतनी
1: फिलोसफी नहीं, ये तो वो है जब थोड़ा सा ऐसे निकल जाती है।
0: जिंदगी में थोड़ा दर्द है, दुख है, क्या करे, बस होता रहता है। वो नाइन्थ क्लास वाली रिया है। नहीं बट यार जोक्स अपार्ट, आज जैसे हमने बोला कि जो अच्छी टीम है वो जीते, जो अच्छा क्रिकेट खेलती है वो जीते, और अगर देखा जाए तो दोनों टीमें टक्कर की हैं। फॉर्म अगर अच्छा किसका है वो ऑब्वियसली अच्छा जो है पंजाब का है। मुंबई के प्लेयर्स अगर फॉर्म में आ जाते हैं तो वो गेम को अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ये हम जानते हैं, हमने कई दफा देखा है। क्योंकि 2019 का जो फाइनल था एक रन से चेन्नई हारी थी, एक रन से मुंबई के खिलाफ, मेरा जो दिल टूटा, मेरे 2-3 बार ब्रेकअप हो चुके हैं, मैं आज तक आंसू नहीं निकले मेरे। उस दिन मैं जो रोया
1: फूट फूट के
0: मैं रूम के अंदर जाके रोया, क्योंकि बाहर जूनियर्स बैठे थे तो मैं उनके सामने तो करके गया।
1: देखिए थाला के लिए तो कोई भी रो सकता
0: है। हाँ और अंदर जाके करके रोने लग गया, मतलब हो गया बस, कोई बात नहीं, दिल तो बहुत दुखा उस दिन।
1: जिस सीजन की आप बात कर रहे हो मेरा पहला ऐसा सीजन था जो मैंने देखा था।
0: उस टाइम में बैंगलोर नहीं थी फाइनल में, उसके बाद भी कुछ साल नहीं थी,
1: बट मैं बहुत छोटी थी तब। और मैं वही बता रही हूँ कि मैंने पहली बार मैंने जो ये सीरीज है ये देखनी शुरू की थी।
0: जी जी जी।
1: सो वो बहुत पुरानी बात है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, होता रहता है होता रहता है। वैसे आपको बता दूं, आपको भी अच्छा लगेगा सुन के, जो सेकंड सीजन था इस लीग का उसमें बैंगलोर फाइनल में आई थी।
1: ओ वाओ।
0: बट वो जीत नहीं पाई, बट यही बैंगलोर की खासियत है कि फर्स्ट सीजन को छोड़ के उन्होंने बाकी हर सीजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं थोड़ा लैक कर जाते हैं बट काफी अच्छा परफॉर्म जरूर करते हैं।
1: ये वही बच्चे हैं जो पूरा साल मेहनत करते हैं, हर एग्जाम में फर्स्ट आते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के टाइम पे इनको जो है चिकन पॉक्स हो जाता है।
0: अब देखिए बोर्ड एग्जाम आने ही वाला है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे शान और श्रेया घोषाल की आवाज में हाउसफुल 2 का गाना, स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑल 106.3 FM।

0: are listening to. You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक 106.3 FM
0: रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई जोन तो मिला।
1: एक मिनट, कोई बात नहीं सुधे, होता है होता है होता है।
0: हम फ्रेंड जोन नहीं होते, क्या बात कर रहे हो हम सीधा ब्रो जोन होते।
1: बात तो सही है, देखो भाई मटेरियल तो हुआ।
0: बिल्कुल, सलमान भाई के आगे छोड़ रखा है हमने सब कुछ।
1: राइट,
0: वेन वेलकम बैक, ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव।
1: और मैं हूँ आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे भाई हम कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड बात जो है आपको बताना चाहेंगे, एक नया अपडेट जो है आपको बताना चाहेंगे, तो तैयार हो जाइए।
1: Yes,
0: तो बताइए।
1: सो देखिए सुदीप, क्या होता है ना कि जब कुछ लोग कमिटेड होते हैं, कुछ लोग कमिटेड जो होते हैं, जिनको जो रिलेशनशिप में होते हैं, उनको ना काफी बार अपना फोन जो है वो अपने पार्टनर को देने में काफी डर लगता है। और आजकल जो है लॉयल्टी के जमाने में भी सब कुछ शेयर किया जा सकता है, है ना, इंस्टाग्राम, बस अपनी AI से जो की हुई चैट है,
0: रिलेट नहीं कर पा रहा मगर कोई बात नहीं, बोलो।
1: जो AI से की हुई चैट है वो आप नहीं शेयर कर पाते,
0: बिल्कुल नहीं शेयर कर पाते,
1: बहुत छुपा के रखते हैं कि यार हमने क्या क्या बेसिक चीजें पूछिए, कि सॉरी कैसे बोला जाए, या नमक कितना डलेगा, या गाड़ी कैसी चलाई जाए।
0: सो
1: इसके चलते जो है अब व्हाट्सएप ने जो अपने AI के साथ जो है एक इनकॉग्निटो मोड जो है वो डाल दिया है, जहां पर आप जो AI से क्वेश्चंस पूछोगे वो तुरंत से पहले जो है जैसे ही आपको आंसर मिलेगा और आप एग्जिट करोगे वो डिलीट हो जाएगा।
0: ये मुझे लगता है इसलिए किया क्योंकि व्हाट्सएप ने जब देखना शुरू किया कि भाई जनता क्या क्या पूछ रही है, क्या सवाल चल रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप के लोगों की, तो भाई पैरों तले जमीन खिसक
1: गई। मैं तो सच में करती हूँ व्हाट्सएप का AI, अब कौन जो है इतने सारे AI खोले और फिर उस पे पूछे। मैं तो जनरली जैसे मुझे कोई ऑफिस के ग्रुप पे जो है कोई मैसेज आया वहीं से कॉपी करती हूँ।
0: इसका रिप्लाई कैसे दूं करके,
1: व्हाट्सएप के AI पे जाए जाके पेस्ट करती हूँ।
0: मैं चाहता हूँ कि हमारे बॉस सुन रहे ना मैं अभी,
1: अभी उन्हें समझ आएगा कि जो रिसेंट के जो मैसेजेस मैंने लिखे वो मैं नहीं थी, वो AI था।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: मैंने तो नीचे अब डिस्क्लेमर डालना शुरू कर दिया है कि देखिए डोंट जज मी, दिस इज द आंसर आई गॉट फ्रॉम माय AI।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे अगला एक बहुत ही बढ़िया गाना आपके लिए प्ले करने वाले हैं। जब जिंदगी में इतने सारे ब्रेकअप हो जाते तो इंसान यही बोलेगा, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। शास्त्र सचदेव और शहजाद की आवाज में धुरंधर मूवी का गाना सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: सुरदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: दंगल मूवी का टाइटल ट्रैक हमने सुना दिलेर पाजी की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो 106.3 FM, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कसर।
0: तो ऑफ एयर में ना मैं और कशिश ऐसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हमने ऐसे बोला था कि यार जब भी प्यार ऐसे होता है तो कुछ कुछ गाने हमें अलग से हिट होते हैं। तो जैसे कि आज शो की शुरुआत में हमने गाना प्ले किया था, तुझसे दूर जो होता हूँ टुकड़ा टुकड़ा सोता हूँ आंखों में पिरोता हूँ मैं रातें करके। तो वो गाना तब मैंने सुनना शुरू किया था जब हम ऐसे प्यार में हुए थे धीरे धीरे, ठीक है, तुम्हारा पहला रिलेशनशिप होता है और तुम आते हो लव में, मतलब उस फीलिंग के साथ जब तुम ऐसे रूबरू होते हो तो गाने बहुत अलग तरीके से हिट करते तुम्हें। और कुछ गाने होते जो हमेशा बहुत स्पेशल रहते हैं तुम्हारे लिए, और ऐसे कशिश यार आपके लिए ऐसा कौन सा गाना है?
1: यार मैं ये बात से अग्री करना चाहती हूँ कि आजकल का तो कोई गाना नहीं है, मतलब अनूप जैन का अर्ज किया है एक गाना है जो मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छा लगने लग गया है, एंड उसमें वो फील गुड वाला फैक्टर है कि आपको लगता है कि ओ ठीक है नाइस फीलिंग। बल्कि अगर मैं पहले के गानों की बात करूं, सो वाला गाना था ना वो पहली नजर वो पहला नशा पहला खुमार, मतलब कैसे समझाऊं मुझे मेरा पहला
0: मैं बताता हूं कौन सा है। कैसे समझाऊं तुम्हें मेरा पहला पहला प्यार है, ठीक है ये गाना है।
1: इस गाने में एक फील गुड फैक्टर है और एक तनु एज मनु का है, वो वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, मतलब जितनी बार मैं सुनती हूँ उतनी बार एकदम ऐसे ससराहट सी फील होती है कि यार अच्छा लग रहा है यार ये गाना, ऐसा लाइफ में कुछ अच्छा होना चाहिए ये गाना जो है आपको रिलेटेबल लगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी कि हादी का बर्थडे
1: अच्छा
0: है
1: या, अरे वाह आपको याद है।
0: बिल्कुल याद है, हम ऐसे भूलते नहीं है, इतनी आसानी से भूलते नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप, बहुत ही याददाश्त है वैसे, काम की चीजें याद नहीं रहती, जैसे कि जब रिलेशनशिप में थे तो बर्थडे भूल गए थे।
1: बर्थडे भूल गए थे भाई, लेकिन मेरे भाई का बर्थडे याद है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत भाई मटेरियल।
0: एनिवर्सरी भूल गए थे, तो ये तो चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे तू जो मिला गाना जो है हमसे मांगा था उसका हमारे पास वर्जन है जावेद अली का, जो हम स्पेशली
1: और ज्यादा खूबसूरत वर्जन है।
0: जी बिल्कुल, ये हम प्ले करेंगे स्पेशली, उसकी भी झलक जो है हम सुना देते हैं आपको।
2: तू जो मिला
0: मगर अभी यहाँ पे हम शो को कंटिन्यू करेंगे इस गाने से। अब इमेजिन करो यार, आप लोग ऐसे हाईवे में गाड़ी क्रूज करके ले जा रहे हो, गाना चल रहा है और हल्का सा विंडो नीचे कर लेना, हल्का सा, ठीक है, ज्यादा नहीं कि वरना गर्म हवा लग जाए, हल्का सा नीचे करना ताकि वो ब्रीज आप एक्सपीरियंस कर पाओ। और इस गाने को एंजॉय करिए एक साथ बैठकर हमारे साथ, और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: इतनी प्यारी मूवी और इतना प्यारा गाना, मतलब क्या ही बताऊं मैं इस गाने का, मैं बहुत बड़ा दीवाना हूं, मुझे बहुत पसंद है गाना, मतलब अलग एक फीलिंग देता है
1: गाना। जितनी बार मैं वीडियो देखती हूं इस गाने की, उतनी बार मेरी आंखों में आंसू से आ जाते हैं।
0: क्या बात कर रहे हैं आप, इतनी छोटी उम्र में। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव,
1: मैं हूं आपकी कशिश,
0: और यहां पे हम जो है बहुत ही बढ़िया स्पोर्ट्स का अपडेट जो है आपको देना चाहेंगे। जीसीसी गेम्स दोहा 2026 के सेकेंड डे पर कतर ने 7 गोल्ड मेडल्स जीतकर मेडल टेबल में अपनी टॉप पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब कतर के पास टोटल 29 मेडल्स हो गए हैं। स्विमिंग में कतर ने जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस दिया। स्विमर्स सादिद्दीन मोहम्मद महमूद, अली तामर हसन और अब्दुल्ला अलगामरी ने इंडिविजुअल गोल्ड जीते और फिर मिलकर 4x100 मीटर फ्री स्टाइल रिले भी जीता। उसके साथ साथ मेंस 3x3 बास्केटबॉल फाइनल में कतर ने बहरीन को 2011 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कतर वुमेन्स 3x3 बास्केटबॉल टीम ने भी हिस्ट्री क्रिएट की और यूएई को 39 से हराकर अपना पहला एवर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और शो जंपिंग इवेंट में कतर की टीम

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
5: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कसिस।
0: यार यहां पे एक बहुत ही बढ़िया खबर जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। कतर ओलंपिक कमिटी और मॉल ऑफ कतर ने स्पोर्ट्स और कम्युनिटी इवेंट्स को प्रमोट करने के लिए एक एमओयू साइन किया है।
1: वाओ,
0: ठीक है। इस पार्टनरशिप के अंडर ओलंपिक डे 2026, एक मेजर बॉक्सिंग चैंपियनशिप और ई फिबा फाइनल्स 2026 एंड 2027 जैसे बड़े इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे।
1: बिल्कुल, अग्रीमेंट का जो मेन फोकस है वो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना है, लोगों को स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है और कम्युनिटी का एंगेजमेंट जो है वो बढ़ाना है।
0: जी बिल्कुल, और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मीडिया मार्केटिंग और प्रमोशनल एक्टिविटीज में भी साथ काम करने का, साथ ही साथ स्पोर्ट्स डेलीगेशन के लिए मॉल ऑफ कतर अफिलिएटेड होटल्स को प्रेफर्ड अकोमोडेशन करके देने का एक जो है मूवी बनाया गया है। और क्यूओसी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये पार्टनरशिप कतर के स्पोर्ट्स सेक्टर को और स्ट्रांग बनाएगा, जबकि मॉल ऑफ कतर ने कहा कि उनका एम सिर्फ शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि कंप्लीट कम्युनिटी हब बनना है।
1: एग्जैक्टली, और अभी पिछले कुछ टाइम में मॉल ऑफ कतर ने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स किए भी हैं जिसमें हमें पता चला है कि हाँ यार बहुत अलग अलग चीजें हो रही हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: दैट्स वेरी नाइस एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए।
0: और यही बात बताते हुए हम दोनों आगे बढ़ते हैं, एक साथ बैठकर गाने प्ले करते हैं। आप भी हमारे साथ बैठकर गाने सुनिए, एंजॉय करिए और कहते रहिए
1: जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

देखिए जी, कभी कभी ऐसा होता है कि मन कर जाता है खुद को कोई गाना डेडिकेट करने का। वेस्ट दिल्ली से कोई हो या ना हो, लेकिन कतर से जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं जो है कड़ी चमकीली जरूर हूँ। वेलकम जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली लेकर आई हुई थी और आपको जो है मॉर्निंग को आपकी हमने बहुत ज्यादा बिंदास बनाने की कोशिश जो है वो करी, बेसिक से बिंदास तक लेकर हम गए, लेकिन अब वक्त हो गया है हमारे यहाँ से जाने का। मतलब सुदेव तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, कहाँ गए हैं वो आपको पता चलेगा सोशल मीडिया पे। सो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को अभी के अभी जाकर फॉलो कर लो तो पता चल जाएगा कि आखिर सुदेव गए कहाँ हैं। बाकी अब मेरे भी यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है, आपको जो है मुस्कान आकर मिलने वाली है, जो आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान जो है वो आपको देने वाली है। सो यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन जो है वो आपने हमें दिया है पूरा दिन और पूरे हफ्ते, अब ऐसे ही इसे बरकरार रखिए। 3311063 हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर अगर अपना प्यार जो है वो हमें और ज़्यादा देते रहिए। किस तरीके से आप वीकेंड सेलिब्रेट करने वाले हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी अगर कुछ ऐसा चाहिए हो, मतलब कि कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ सजेशन चाहिए हो, सो वो भी मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन गानों को एंजॉय करते रहिए। अब अपनी दुआओं में जो है हमें याद रखिए, एंड बाकी ये जो है जियो बिंदास तो कहते रहना है ना। देखो फहीम अब्दुल्ला की आवाज में ये गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए, कहिए जियो बिंदास। Happy weekend, ta-ta, bye-bye.

0: छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
4: This hour is brought to you by
5: Homesar Us. We complete.

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। वेलकम टू लाइफ मस्त है वीकेंड एडिशन। और ऑनेस्टली वीकेंड का एक्साइटमेंट ना सिर्फ आज रात तक ही रहता है पीक पर, क्योंकि थर्सडे आता है, वीकेंड आता है, बहुत सारी नई नई चीजें दिमाग में आती है, पर फ्राइडे मॉर्निंग आते ही बॉडी बोलती है कि यार सिर्फ सोना है। सो एडल्ट लाइफ का बिगेस्ट आयरनी ये है कि हम पूरा वीक वीकेंड का वेट करते हैं, और वीकेंड पे लॉन्ड्री, ग्रॉसरी, पेंडिंग काम, और ऑनेस्टली रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल फिजिकली कम मेंटली ज़्यादा हम टायर्ड हो जाते हैं। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन, ऑफिस प्रेशर, कंपेरिजन्स, फ्यूचर की टेंशन, ब्रेन को ब्रेक ही नहीं मिलता। इसीलिए आज का सिंपल सा मिशन है, नो ओवर थिंकिंग, नो गिल्ट, बस थोड़ा सा एंजॉय करो, कॉफी लो, एसी ऑन करो और लाइफ मस्ते के साथ चिल करो विद ब्यूटिफुल ट्रैक्स। थोड़ी देर में बात करेंगे कतर की, कतर के गेम्स की, और थोड़ी देर में आपको बताऊंगी कि जीसीसी गेम्स 2026 के बारे में। सो यू डोंट गो एनीवेयर, सुन रहे हो रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, एंड यस, हैप्पी थर्सडे।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो अगर मैं दोहा की बात करूं, कतर की बात करूं, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स फीवर ना ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। कतर हैंडबॉल फेडरेशन ने जीसीसी गेम्स 2026 के लिए नेशनल टीम और मैच स्केड्यूल अनाउंस कर दिए हैं, और ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं सबकी। टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और यूएई के अगेंस्ट फिर से मैचेस होंगे, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया के साथ, और बेस्ट पार्ट क्या है, होम क्राउड एडवांटेज। स्पोर्ट्स में क्राउड एनर्जी ना बहुत ज्यादा आपको पावर फील देती है। कभी स्टेडियम में लाइव मैच देखा है आपने, तो आपको पता होगा कि क्राउड का जो नॉइस है वो लिटरली गेम का मूड चेंज कर देता है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइव मस्त है। और कतर का हैंडबॉल हिस्ट्री भी काफी स्ट्रांग रहा है, वैसे एशियन लेवल पर भी कतर रैपिडली इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देता रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जीसीसी गेम्स सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं है, यहाँ पर ब्रदरहुड का सिंबल भी है और इसीलिए स्लोगन भी है कि वन गर्ल वन हार्ट। और ऑनेस्टली स्पोर्ट्स का बेस्ट पार्ट भी यही है कि कंट्रीज कंपीट करती हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी बिल्ट होता है यहाँ पर एक दूसरे के लिए। सो आपको क्या लगता है कि आप जब गेम्स की बात आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, आई नो कि बहुत सारे लोगों का जो स्पोर्ट्स है वो कॉलेज के बाद छूट जाता है, लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, पर अगर आप कंटिन्यू करते तो कौन सा वो स्पोर्ट होता। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: The big, big, biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: एलकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

सो भाई आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए। कतर यूनिवर्सिटी और PHCC ने मिलके एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है, प्रोटेक्ट दोस हु प्रोटेक्टेड यू। और ऑनेस्टली स्लोगन ही बहुत इमोशनल है, तो कैंपेन तो होगा ही। सो अगर मैं बात करूँ तो ये एक वैक्सीन अवेयरनेस के लिए है, जो स्पेशली 50+ एज ग्रुप के लिए रिकमेंडेड है। अब काफ़ी लोग जो है वो बहुत कन्फ्यूज हो गए होंगे कि किस लिए है, क्या चल रहा है। सो सिंपल लैंग्वेज में ये पेनफुल वायरल कंडीशन होती है जो एज के साथ रिस्क इंक्रीज करती है, और डॉक्टर्स बोलते हैं प्रिवेंशन पॉसिबल है थ्रू वैक्सीनेशन। सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैंपेन का ये अगर मैं बात करूँ तो फोकस है यंग जनरेशन पर, मतलब स्टूडेंट्स और यंगर अगर मैं लोगों की बात करूँ तो उनको इंकरेज किया जा रहा है सो वो अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को वैक्सीन के लिए मोटिवेट कर सकें। हम पेरेंट्स को यूजुअली तब याद दिलाते हैं जब वो ऑलरेडी बीमार होते हैं, जब ऑलरेडी यू नो सिक फील कर रहे होते हैं। सो आई विल से कि हम मेडिसिन पे फोकस करते हैं और प्रिवेंशन पे कम। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो इसीलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कतर में ये बेस्ट पार्ट है कि हर चीज़ पे फोकस किया जाता है। बाय द वे थोड़ी देर में हम एक किताब की बात करने वाले हैं, और किताब का नाम है द शैडो ऑफ माइंड। सुंदर रेडियो ऑल, आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
1: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सो किताबें ना हम एक एक्सपीरियंस के लिए पढ़ते हैं, और अगली किताब भी कुछ ऐसे ही है जिसमें मिस्ट्री है, इमोशंस हैं, बुक्स हैं और ओल्ड सिटी वाइब है. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है और किताब का नाम है द शैडो ऑफ द विंड.
1: बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: सो अगर आपको ये सब पसंद है जहाँ पर ओल्ड सिटी वाइब है, इमोशंस है, मिस्ट्री है, तो ये बुक आपके लिए परफेक्ट है. स्टोरी बार्सिलोना सिटी में सेट है और एक हिडन प्लेस होता है वहाँ पे. सो एक ऑनेस्टली एक नाम ही सिनेमैटिक लगेगा आपको इस किताब का, जहाँ से एक बॉय की मिस्टीरियस बुक चूज होती है और उसके बाद स्लोली सीक्रेट्स जो हैं वो अनफोल्ड होने लगते हैं. और इस किताब का बेस्ट पार्ट क्या है कि बुक रीडिंग और स्टोरी टेलिंग के लव को और भी ज़्यादा सेलिब्रेट करती है. इसमें सस्पेंस भी है, रोमांस भी है और इमोशनल लोनलीनेस भी है. और ऑनेस्टली कुछ किताबें स्टोरी नहीं लगती, एटमॉस्फेयर लगती है. ये बुक पढ़ते वक्त लगता है जैसे रेनी इवनिंग चल रही है. अब कतर में तो ऑलरेडी बहुत गर्मी आ गई है, तो अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट आपकी इमेजिनेशन में सब कुछ बहुत परफेक्ट हो, देन यू कैन रीड दिस बुक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

So, क्या लगता है आपको, क्या श्रेयस फिर से 50 लगाएंगे या फिर रोहित कितने रन बना पाएंगे, क्योंकि आज है पंजाब वर्सेस मुंबई। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मैचेस। तो मैंने सोचा भाई हर दिन मैं आपको मैच की अपडेट्स देती हूँ। कतर के बारे में बात चल रही थी, किताबों के बारे में बात चल रही थी और आज तो वीकेंड भी है, थर्सडे भी है, सो ये सब बातें ना और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती हैं क्योंकि शाम का मैच आप आराम से इंजॉय कर सकते हो। सो बेसिकली आज शाम को आप अपनी फेवरेट जगह पर जाकर अपनी फेवरेट स्क्रीन पर मैच देख सकते हो। बाय द वे मेरी फेवरेट जगह और स्क्रीन तो मेरा घर ही है। बेंगलुरु वर्सेस कोलकाता का मैच था कल, जिसमें स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था बट स्टिल बेंगलुरु ने मैच को जीत लिया और टॉप जो टेबल में टॉप पर है वो कोलकाता और बेंगलुरु के मैच के बाद जो बेंगलुरु है वो फिर से टॉप में ही है। सो वी विल टॉक अबाउट यस्टरडेज मैच, पर आप मुझे बताओ कि आपको कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा पसंद है। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Geo Bindas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: सुकल मैच था बैंगलोर और कोलकाता का। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं बैंगलोर के लिए कि भाई उनकी फेवरेट टीम है, और स्टिल कोलकाता के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आ ही रहे हैं। पर यस, बैंगलोर की अलग ही फैन फॉलोइंग है। सो कल के मैच की अगर बात करूं तो कोलकाता को 6 विकेट से हराया था कल, और इस जीत के साथ बैंगलोर जो था वो पॉइंट टेबल पर टॉप पर था। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और आज तो वीकेंड भी है यार, मतलब शाम को आप आराम से यू नो घर जाके अपना फेवरेट मैच जो है वो एंजॉय कर सकते हो शाम को, क्योंकि आज होने वाला है पंजाब वर्सेस मुंबई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कल के मैच की। तो आपको बताती हूं कि कोलकाता के लिए अंकरश रघुवंशी ने सबसे ज्यादा 46 बॉल्स में 71 रन बनाए थे कल, और जिसमें 7 चौके और 3 छक्के भी थे। फिर आखिर में रिंकू सिंह ने तेज जो है बैटिंग की और 29 बॉल्स में नॉट आउट हो गए, 49 रन बनाए। सो स्टार्टिंग में फिनाल ने 8 बॉल में 18 रन की अच्छी पारी खेली, जबकि जो अजिंक्य रहाणे थे उन्होंने 13 बॉल में 19 रन बनाए, और कैमरमैन ग्रीन ने 24 बॉल्स में 32 रन बनाए। बेंगलुरु की तरफ से भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और रसिक सलाम डार को 1-1 विकेट जो था वो मिल गया था। मैच मतलब शुरुआत से ही बड़ा अच्छा चल रहा था। अब बात करूंगी कि आज वाला जो मैच है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज भी कैप्टन्स दोनों ही बहुत अच्छे हैं। श्रेयस भी है एक टीम में और दूसरी टीम में रोहित है, तो दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हैं। वी विल सी कि क्या होता है आज। पर उससे पहले बात करेंगे कि और क्या क्या चल रहा है कतर में, और आज तो थर्सडे भी है तो क्या प्लान्स हैं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Radio Honest, your happiness frequency.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
4: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
3: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई

मतलब अगर मैं बात करूं किसी ऐसी एक्सरसाइज की या किसी ऐसे स्पोर्ट्स की जो एक्चुअली आपको हर वक्त यू नो अच्छा फील करवाता है, उसमें से एक है स्विमिंग. और कतर के स्विमर्स ने GCC गेम्स में लिटरली स्प्लैश कर दिया है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. ओपनिंग डे पर ही कतर ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल्स ले लिए हैं. सो इंटरेस्टिंगली मल्टीपल गर्ल्फ रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हुए हैं और यहाँ पर कई सारे लोगों ने कई सारे अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं. प्लेयर्स बहुत ही अमेजिंग है और TV में 2 मिनट की रेस लगती है, लेकिन जब आप उसे सामने देखोगे, जब आप मेहनत के बारे में सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे कितनी प्रैक्टिस है, कितनी मेहनत है. लेकिन सुबह अर्ली ट्रेनिंग के साथ स्ट्रिक्ट डाइट, कॉन्स्टेंट यू नो रिपीटेशन, जो सेम हर दिन उनका रूटीन होता होगा. चैंपियंस ना रेस डे पर नहीं बल्कि प्रैक्टिस डे पे बंधे हैं. एंड आई फील कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, स्पेशली इन स्विमिंग जहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है. कल बाय द वे मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पर एक 13 साल के बच्चे ने अपनी पूरी फैमिली को बचाया सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग की वजह से. वो स्टोरी भी कभी आपको सुनाऊंगी, पर अभी बस ये बता रही थी कि कतर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग तरीके से स्ट्रांग हो रहा है और फुटबॉल के बियॉन्ड भी एथलीट्स जो हैं वो शाइन कर रहे हैं, चाहे वो हैंडबॉल हो या फिर स्विमिंग हो. एंड आई रियली लाइक इट. मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं पढ़ती हूँ कि कौन जीत रहा है, कौन सी टीम कैसा खेल रही है. एंड कोई भी जीते डजंट इवन मैटर, मतलब फ़र्क ये पड़ता है कि आप उस कॉम्पिटिशन को कितना हेल्दी ले रहे हो. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

सो बेसिकली ईद का मूड जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, लोग शॉपिंग करने लगे हैं, वीकेंड पे प्लान करने लगे हैं, और कतर के काफी होटल्स जो है वो ऑलरेडी ईद स्टेकेशन पैकेज लॉन्च कर रहे हैं। मतलब अगर आप ट्रैवल प्लान भी कर रहे हो तो भी, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मिनी हॉलीडे फील कर सकते हो इवन इन कतर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। अब होटल्स क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, ब्रंच होता है, डिनर बुफे है, किड्स एक्टिविटी, पूल एक्सेस, फैमिली एंटरटेनमेंट, और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए भी थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है। और ऑनेस्टली कतर में स्टेकेशन कल्चर ना काफ़ी ज़्यादा देखा है मैंने इवन कुछ टाइम में, क्योंकि कभी कभी ना लॉन्ग ट्रैवल से ज़्यादा रिलैक्सिंग जो ट्रैवल होता है, स्टेकेशन होते हैं, वो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। ट्रैवल करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी तैयारियाँ, बहुत सारी टिकट्स, बहुत सारी प्लानिंग, पर स्टेकेशन के लिए आपको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। बस नियर बाय जो लग्जरी होटल्स हैं वहाँ पर फ़ोन करो और चुपचाप से अपनी बुकिंग करा के आराम से यू नो आप इन्जॉय कर सकते हो। फैमिलीज स्पेशली ऐसे पैकेजेस इन्जॉय करती है। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट कि भाई आपके आसपास कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आप ज़्यादा इन्जॉय करोगे, या आप बहुत टाइम से उसे एक्सपीरियंस करना चाहते हो। बाय द वे मैंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

वेल स्टैटिस्टिक्स है जो वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा भाई आपको भी बताती हूँ टॉप कंट्रीज जहां पर मोस्ट पीपल कभी अब्रॉड ट्रैवल किए ही नहीं है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। मतलब मैं जिसकी स्टोरी देख रही हूँ वो यही बात कर रहा है। और नंबर वन पे, मतलब मैं आपको ऐसे धीरे धीरे सरप्राइज नहीं दूंगी कि फिफ्थ नंबर पे ये है, फोर्थ पे ये है, क्योंकि मैं आपको सीधे बताने वाली हूँ कि सीधे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो बताया गया है कि नंबर वन पर है विद अराउंड 97% पीपल नेवर ट्रैवलिंग इंटरनेशनली। मतलब 97% लोगों ने इंडिया में इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ पैसा इशू नहीं होता, इंडिया का साइज इटसेल्फ बहुत मैसिव है। लोग ऑफन स्पेंड करते हैं अपनी जो लाइफ टाइम एक्सप्लोरिंग है वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर टू कन्याकुमारी, साउथ से लेके राजस्थान कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जिसकी वजह से वो कभी आउट ऑफ कंट्री एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते। और ऑनेस्टली इंडियन फैमिलीज ट्रेडिशनली सेविंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फैमिली प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ट्रैवल उनके लिए लग्जरी माना जाता है जो शायद हर फैमिली नहीं करना चाहती। और पासपोर्ट कल्चर भी ना वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कॉमन नहीं था वहाँ पे, लेकिन यंगर जनरेशन धीरे धीरे चेंज कर रही है। लोग अब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, सोलो ट्रिप्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, और सोशल मीडिया ने भी ट्रैवल इंस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। लेकिन सच बात तो ये है कि ट्रैवल सिर्फ कंट्री चेंज करना नहीं होता, बेसिकली पर्सपेक्टिव चेंज करना होता है। आप कुछ नया सीखते हो, आप कुछ नया देखते हो, आप नए लोगों से मिलते हो, बस यही होता है ट्रैवल का असली मज़ा। सो आप मुझे बताओ कि आपकी फैमिली में कितने लोगों ने पहले इंटरनेशनली ट्रैवल किया है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, 3311063 इज माई नंबर एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। Stay tuned, Jio Bindas. Awesome. Radio Olive Pad. Aane wala gaana. Cool song of the hour.

0: बाय द वे, आज मैं ऑलरेडी किताब के बारे में बात कर चुकी हूँ, लेकिन अब वीकेंड है तो सोच रही हूँ कोई ऐसी किताब के बारे में बात करूँ जो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करे. आज की बुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हर मंडे, हर नए वीक पर या हर नई तारीख पर एक नई डाइट स्टार्ट करते हैं. सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ईट की. सो ये किताब आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही अच्छा दिखा सकती है. और ऑनेस्टली ये टिपिकल स्ट्रिक्ट डाइट बुक नहीं है, ये फूड के साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है.
1: ओके, बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: यस, तो किताब का नाम है हाउ टू ईट. ओके, ये जो है किताब, ये बार बार आपको एक सिंपल पॉइंट बोलती है कि हेल्दी ईटिंग पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और ऑनेस्टली आज का बिगेस्ट इशू भी यही है कि हम फूड को या तो गिल्ट बना देते हैं या फिर ऑब्सेशन, कभी एक्सट्रीम डाइटिंग और कभी इमोशनल ओवर ईटिंग. और सोशल मीडिया ने भी अनरियलिस्टिक फूड कल्चर को क्रिएट कर दिया है. भाई डिटॉक्स ट्रेंड आ गए हैं, इम्पॉसिबल डाइट्स आ गई हैं, समर बॉडी प्रेशर बन जाता है कि भाई ये खाना है वो पीना है. लेकिन बुक का अप्रोच काफ़ी कम्फर्टिंग है, बैलेंस, माइंडफुल ईटिंग, इंजॉइंग फूड, रियलिस्टिक हैबिट्स, और धीरे धीरे स्किन, मूड, एनर्जी, स्लीप सब कुछ बेटर होने लगता है. सब इफेक्ट करता है बॉडी को. फ्यूल की तरह हमें लेना चाहिए, कि हमें फ्यूल की तरह फूड को लेना चाहिए बेसिकली. सो सेल्फ केयर भी खाने में ही आता है, मतलब खाना ही सेल्फ केयर में आता है. सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि भाई आप कैसे अपनी बॉडी को फ्यूल दोगे और क्या फ्यूल दोगे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: बाय द वे, मैं अपना इंस्टाग्राम जब भी खोलती हूँ मुझे कांस में कोई किसी बहुत ही अमेजिंग से ड्रेस में दिख जाता है, और अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे आलिया भट्ट जो है वो कांस के एक नए लुक में नजर आई, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन पहना हुआ है एंड इट लुक्स सो प्रिटी. मतलब जेंटल रिमाइंडर देनी थी वो अपने कैप्शन में कि इट्स टाइम टू से बाय, क्योंकि ये उनका लास्ट लुक था एंड वो सच अ ब्यूटीफुल लुक. उसमें वो एक प्रिंसेस से कम तो नहीं लग रही थी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है, और ये है आज का लास्ट थॉट, क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया है और कल फ्राइडे है और हम शाम को मिलने वाले हैं यस टेक टॉक में, वेयर वी विल टॉक अबाउट ओनली टेक्नोलॉजी. और ऑनेस्टली प्लीज कल रेस्ट कीजिएगा विदाउट एनी गिल्ट. अगर आपको ईद की शॉपिंग करनी है, अगर आपको कोई घर की तैयारियां करनी है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा विंडो निकाल सकते हैं आप. सो आज की जनरेशन को ना रेस्ट करते वक्त बड़ी एंजाइटी होती है, प्रोडक्टिव नहीं हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन सच बात यह है कि रेस्ट भी काम का पार्ट होता है. स्लो मॉर्निंग्स, गुड फूड, फैमिली टाइम और फोन से डिस्टेंस, बस यही है बेस्ट वीकेंड. तो इस वीकेंड थोड़ा सा ब्रीथ कीजिए, थोड़ा स्लो हो जाइए, क्योंकि लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं है, एंजॉय करने के लिए है. एंड यू शुड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली. थोड़ा सा फोन को दूर रख के ट्राई कीजिएगा और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. कल मिलते हैं शाम को विद द न्यू टेक्नोलॉजी टॉक्स. सुनते रहिए, स्टे ट्यून, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

Radio Olive, your happiness frequency. Olive Music Marathon. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive, I'm a number one. Naya look, naya feel. Carrefour Villaggio aa gaya hai aur bhi fresh. Ab shopping hogi aur bhi easy aur bhi exciting. With more services, more savings aur puri family ke liye better shopping experience.
1: 14 se 16 May tak Villaggio store mein shopping karo aur pao 10% cashback as my club points on every purchase.
0: To aaj hi visit karo Carrefour Villaggio. Carrefour, shop better, save more. TNC apply.
2: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
3: मॉर्निंग्स एंड नाइट

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

0: Tanisha.
1: Tanisha. What a beautiful track, yaar. Shafkat Amanat Ali sahab ki awaaz mein. Mora Saya. Only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aage ji aapke saath Olive Recharge lekar. A very good afternoon, meri jaan. थर्सडे है मे 14th. खुश तो बहुत हो गए तुम, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि वीकेंड इज हियर.
2: एक नंबर तुझे कमर है ताल शेकी शेकी है कितनी सुंदर तुझे डिंपल जे पाई जे टेकी.
1: बनता है वीकेंड में तो यही होना चाहिए. पूछ के कोई फायदा नहीं है.
3: लो चले मितवा
1: वीकेंड की तरफ, ढेर सारी नींद की तरफ,
3: बाहों में कहीं हम खो
1: और बहुत सारे चोर्स भी यार.
3: अब तो आदत सी है मुझको
1: वो करते हुए मैं यही बोलती हूँ. All these amazing tracks are lined up for you in this hour. और ढेर सारे surprises और भी हैं बीच में. लेकिन शुरुआत आपको पता है आपसे होनी है. बताइए आपके हालचाल कैसे हैं. How has the Thursday been so far? How is it treating you? What's the mood for the day? 3311-1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444-1063 पर. फिलहाल एंजॉय करते हैं अरिजीत सिंह और तरन्नम की आवाज में एक दिन मूवी से ख्वाब देखूं. Stay tuned and Jio Bindaas.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: तनिषा
1: अरिजीत और प्रिया सरैया की आवाज में मेड इन चाइना से वालम ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑल वी चार्ज चल रहा है यहाँ पर और वीकेंड आ गया है इसके लिए एक बहुत बढ़िया सी विजडम लेकर आई हूँ मैं सो दैट आप यू नो फिजूल की चीजें सोचने में अपना वक्त जाया ना करें जी सो गौर से सुनिएगा इंटरनेट हुआ स्लो कभी ना हो इंटरनेट हुआ स्लो वीडियो हुआ बफर जी इंटरनेट हुआ स्लो वीडियो हुआ बफर इग्नोर चार लोग क्या कहेंगे टू एंजॉय जिंदगी का सफर ओए होए होए हां जी वीकेंड का इंतजार हम कर रहे होते हैं यू नो जैसे ही एक हफ्ता खत्म होता है मतलब सैटरडे की रात होती है मैं फिर से वेट करने लग जाती हूँ थर्सडे की शाम कब आएगी तो अब जब आ गया है तो हमने इसे फुल ऑन एंजॉय करना है कोई स्ट्रेस नहीं लेना है यू नो कि ये हुआ हफ्ते में अगले हफ्ते में मुझे ये काम करना है वो तब दिखा जाएगा आप वीकेंड पे चिल करेंगे अपने लिए वक्त निकालेंगे फ्रेंड्स फैमिली के लिए वक्त निकालेंगे और बस मस्त रहने का खुद को थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम दिया करो अपने दिमाग के टैब्स को बंद कर दिया करो वीकेंड्स पे ठीक है सेंडिंग कूल सॉन्ग ऑफ द आवर स्टे ट्यून्ड जो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है Awesome.

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज.
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM पर Jio Bindaas.
2: Olive Recharge.
4: In association with
5: Homes Are Us, we complete your home.
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
7: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा
1: कविता कृष्णमूर्ति और साथ में उदित नारायण साहब की आवाज में चलो चले मितवा वीकेंड की ओर नायक मूवी से सुना आपने तनिषा के साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और सरिता जी का मैसेज आया है मुझे
2: गुड आफ्टरनून आरजे तनिषा बहुत अच्छा आपने सॉन्ग प्ले किया
1: थैंक यू
2: वीकेंड तो आपने अभी से ही बना दिया पहले ही सॉन्ग से बहुत ही अच्छा आपका कैसा डे है कैसा गया आपका वीकेंड का क्या प्लान है आप लोग पूछते हो ना इसलिए मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे
1: थैंक यू सो मच सरिता जी मीन्स अ लॉट आपको गाना पसंद आया ना आपकी वीकेंड की शुरुआत बढ़िया हो रही है ना बस यही मेरा गोल था और आप अगर मेरे वीकेंड की बात करें तो आई थिंक यू ऑल नो हर वीकेंड मेरा यही प्लान होता है कि मुझे करनी है लॉन्ड्री मुझे करनी है क्लीनिंग मुझे ग्रोसरी स्टॉक करनी है पर इस बार मेरा मन है कि थोड़ा क्रेजी हो जाए और मैं खर्चा कर दूं मम्मी की लैंग्वेज में कहूं तो पैसे पट के आ जाऊं मेरा शॉपिंग करने का बहुत जोर से मन कर रहा है सो आई माइट plan to go somewhere and you know shop some good clothes तो या देखते हैं क्या होता है आप बताइए आपका क्या प्लान है इस वीकेंड का कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ बिंज वॉच कर रहे हैं तो उसमें मैं मदद कर सकती हूँ अगर ऐसे डिसाइड नहीं हो पा रहे हैं तो ठीक है डू लेट मी नो 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khul.
1: Olive Recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
2: इन एसोसिएशन विद
3: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
5: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: जिस्बा तनिषा
1: संजय राठौड़ की आवाज में शेकी शेकी ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च की है कुछ नई डिजिटल सर्विसेज फॉर सेफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डिस्पोजल एंड एज वी नो दैट कतर हैज बीन डूइंग सम कमेंडेबल वर्क टुवर्ड्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड सस्टेनेबिलिटी और ये उसी का पार्ट है. दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्रीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट्स टू मेक एनवायरमेंटल सर्विसेज फास्टर एंड ईजियर. सो 29 ऑनलाइन सर्विसेज जो है उन्होंने अपनी वेबसाइट के थ्रू इंट्रोड्यूस की है. 57 सर्विसेज बिया ऐप के थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस की है, आप चेकआउट कर सकते हैं. ये जो नई सर्विसेज हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और हजार्डस वेस्ट जो डिस्पोजल है इसका उसके लिए परमिट्स और ट्रैकिंग सिस्टम है. सो आपको फिजिकल विजिट्स की जरूरत नहीं है, चीजें और आसान हो जाएंगे आपके लिए. एंड इट एम्स टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल सेफ्टी जिसकी बहुत जरूरत है. सिंप्लीफाई द प्रोसीजर्स सो दैट आपका समय ज्यादा जाया ना हो और टाइम और एफर्ट भी सेव कर रहे हैं ऑब्वियसली. And it will encourage people, otherwise you know ki वक्त लगेगा and कहाँ जाएंगे physically ऐसे चल के. So people do not pay a heed to it. So अभी because they can do it from the comfort of their homes or wherever they are, तो और ज़्यादा encouragement होगी लोगों में, you know, for proper waste disposal practices. And ministry ने emphasize किया है for the importance of safely disposing electronic waste, जैसे कि mobile phones हो गए, laptops, batteries, home appliances, other electronic devices, क्योंकि हमारे environment का ख्याल रखना हमारी ही तो जिम्मेदारी है ना. तो बहुत बढ़िया है, चेकआउट कीजिए ये सर्विसेज. एंड सुनते रहिए रेडियो ऑल अप जियो बिंदास.
2: Radio

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: 106.3 रेडियो ओलिव.
4: रेडियो ओलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha आपके साथ जावेद अली साहब की आवाज में श्रीवल्ली सुना आपने पुष्पा दी राइस से. और अगर वीकेंड पे कुछ बिंज वॉच करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या देखें, तो पहले मैं बता देती हूँ मैंने दोबारा से देखना क्या शुरू किया है. आई स्टार्टेड वॉचिंग वेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स अगेन. एंड फिर से ही मुझे वो उतना ही प्यारा लग रहा है. कितना सुंदर शो बनाया है यार, बहुत ही क्यूट है. अगर नहीं देखा है, यू नो यू लव के ड्रामास और ऐसे थोड़ी स्ट्रगल, थोड़ा प्यार, क्यूट मोमेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको पसंद है किसी एक सीरीज में, तो डू वॉच वेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स. इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. एंड ऑल्सो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी आ रही OTT पे इस हफ्ते. सो धुरंधर द रिवेंज, जी हाँ, आज रात को आ जाएगी नेटफ्लिक्स पे. कर्तव्य आने वाली है नेटफ्लिक्स पे 15th को, दैट इज टुमोरो. इसमें है हमारे सैफ अली खान साहब. और अगर थिएटर जाना चाहते हैं तो पति पत्नी और वो दो रिलीज हो रही है कल. सो ये ऑप्शंस हैं आपके पास. एंड देर आर अ लॉट मोर शोज, यू नो, विच यू माइट हैव नॉट एक्सप्लोर्ड, या फिर वो आपकी माई लिस्ट में पड़े होंगे. चेकआउट करो और वक्त निकालो और देख डालो. जी हाँ, और सुंदर रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: अलीशा चुनाव और आतिफ असलम की आवाज में अजब प्रेम की गजब कहानी से तेरा होने लगा हूँ ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। तनिशा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर।
1: और ट्रेंड में क्या है, क्या है? What's trending?
0: बताती हूँ आपको एक बहुत कमाल की चीज जो कि ट्रेंड कर रही है, वो है एक ऐप जो कि एक चाइनीज डेवलपर ने बनाई है। सो इस ऐप में खास क्या है वो मैं बताती हूँ। सो बेसिकली इट्स अ ब्राउजर एक्सटेंशन कॉल्ड कैट गेटकीपर, जी, एंड इट इज डिजाइन टू ब्रेक योर स्क्रोलिंग हैबिट इन अ सरप्राइजिंगली सिंपल वे। सो ये जो ऐप है, जब आप ये एक्सटेंशन डालेंगे अपने लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में ये ऐप डालेंगे, तो ये ट्रैक करेगी कि आप कितना ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं डिस्ट्रैक्टिंग साइट्स पे, जैसे कि सोशल मीडिया, है ना। एंड वंस यू हिट योर लिमिट, एक लिमिट सेट करनी है कि भाई इतने घंटे बस, और फिर जैसे ही आपने वो लिमिट को हिट कर लिया, एक बड़ी सी ऑरेंज कैट आके आपकी स्क्रीन पे बैठ जाएगी, ब्लॉक कर देगी इंटायर स्क्रीन को, आप देख ही नहीं पाओगे, आप स्क्रॉल ही नहीं कर पाओगे, एंड यू विल बी फोर्स टू टेक अ ब्रेक। एंड दैट इज सच अ क्लेवर आइडिया। मतलब हम सब रिमाइंडर लगा लेते हैं, यू नो, एक डेटा लिमिट भी लगा रखी होती है, बट वी अवॉइड इट, वी फाइंड वेज टू अवॉइड इट, यू नो, एंड रिमूव इट। पर अगर एक बड़ी सी बिल्ली आके बैठ जाए स्क्रीन पे, तो कैसे अवॉइड करोगे? ब्रेक तो लेना पड़ेगा बाबू। एंड इट शोज कि कितने सिंपल और आसान तरीके से डिजाइन के थ्रू हम बिहेवियर में चेंजेस लेकर आ सकते हैं।
2: सामने ये कौन आया, दिल में हुई हल्की।
0: वंस यू स्टार्ट यूजिंग दैट ऐप, यही बोलोगे। This track goes to the developer. कमाल काम किया है बंदे ने। I would love to use this app. आपका क्या ख्याल है? Would you want to try this? बताएं मुझे 3311106 3 पर and stay tuned to Radio Olive. Cheers, Bindas.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, मैं राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पाडवी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: तनिषा
1: सोहेल सेन की आवाज में आशिक तेरा फ्रॉम द मूवी हैप्पी भाग जाएगी अलोंग विद अल्तमश फरीदी ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर आज मैं आपको वैकी विजडम में इतनी क्रेजी चीज बताने वाली हूँ जो हम सब ने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा आई मीन मोस्ट ऑफ अस ने क्या पता आप में से किसी ने किया हो एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो टुडे सो व्हेन यू सी द लैंग्वेजेस द वे वी राइट साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं जिस तरह से हम लिखते हैं उसे इट इज मोर यू नो इट इज मोर कर्वियर और या फिर राउंडेड फैशन में है ना एंड वेयर इज नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस जब आप उठाओगे हिंदी संस्कृत हो गया तो इट इज मोर स्ट्रेट लाइन वाले फीचर में जाती है वो सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट एंड ट्रीज आर द रीजन बिहाइंड इट यस सो दोनों एक ही स्क्रिप्ट से ली गई हैं लैंग्वेजेस सो साउथ इंडिया में दे यूज टू राइट ऑन ड्राइड पाम लीव्स और इसीलिए उन्हें वो जो राउंडेड फैशन है ना उसको कंटिन्यू रखना पड़ता था अदरवाइज वो स्ट्रेट लिखने की कोशिश करेंगे तो वो लीव्स डैमेज हो जाएंगी वेयर एज नॉर्थ इंडिया में दे यूज टू राइट ऑन बर्च बार्क भोज पात्र जिसे बोलते हैं और वो बहुत थिक होता है तो उस पे लिखने के लिए उन्हें स्ट्रेट फैशन की जरूरत थी दैट इज वाई ऑल दी नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस लुक वेरी स्ट्रेट यू नो स्ट्रेट लाइन में दिखती हैं एंड आर्किटेक्चर की तरह नजर आती है और जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं जब आप उन्हें लिखते हैं इट लुक्स मोर लाइक आर्ट हाउ ब्यूटिफुल आई नेवर थॉट ऑफ इट पता है माइंड ब्लोन यार Beautiful. Did you know about this? Please, bataye mujhe. And sunte rahiye Radio Olive, Jio Bindas.

0: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
1: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर TNC अप्लाई
2: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर।

0: तनिशा
1: आसिफ अजहर और ज़ैनब की आवाज़ में बहुत सुंदर गाना गलत फहमी ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिशा आपके साथ ऑल एवरी चार्ज चल रहे हैं पर और वक्त हो चुका है जी सो आज का लेम जैम्स का सवाल बहुत आसान है सो द क्वेश्चन इज अ रूम वेयर नोबडी कैन स्लीप और लिव एक ऐसे रूम का नाम आपने मुझे बताना है जहाँ पे ना कोई रह सकता है ना कोई सो सकता है 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर अ रूम वेयर नोबडी कैन स्लीप और लिव इन बताएं मुझे और ज़्यादा दिमाग पे इतना जोर भी नहीं डाल देना है कि लॉजिक में पहुँच जाओ रूम ढूंढने लग जाओ नहीं कोई और चीज़ भी हो सकती है सोचिए जरा इससे ज़्यादा हिंट क्या दूँ यार मैं
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
3: क्या बात है सर क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। The Big Biggest Jewelry Festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: अब देर लगा और हो जा रिचार्ज.
4: ऑलिव रिचार्ज.
5: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर. जियो बिंदास.
4: ऑलिव रिचार्ज.
6: With Homes Are Us, we complete your home.
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream, dream bigger.

0: तनिषा
1: अशिता की आवाज में शरारा शरारा फ्रॉम द मूवी मेरी यार की शादी है। भाई बहुत डांस किया है इस गाने पे, बहुत ही ज्यादा। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम तनिषा, आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहे हैं। अब लेम जाम्स का आज का मेरा सवाल था कि यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ अ रूम जहां पर ना कोई रह सकता है ना कोई सो सकता है। सो आई हैव गॉट अ फ्यू आंसर्स ओवर हियर एंड मोस्ट ऑफ देम आर राइट, बट अहमद जी का आंसर जो है स्टूड आउट किया है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है वॉशरूम। गलत आंसर है बाय द वे, क्योंकि वॉशरूम में सो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जी हाँ, और सही आंसर बताएगी हमें आरोही।
2: मैं हूँ आरोही और मेरे ख्याल से मशरूम है एक रूम जिसमें आप रह नहीं सकते।
1: एकदम करेक्ट बात है आरोही, आई मस्ट टेल यू, यू हैव सच अ स्वीट वॉइस। थैंक यू सो मच डार्लिंग फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माय लेमनेस। एंड अगला गाना आपके लिए स्पेशली एंड टू ऑल द पीपल हु आंसर्ड माय लेम जाम्स का क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइज, लौट कर आती हूँ कुछ ही देर में और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
3: Testing one, two. Yeah. Ladies and gentlemen, when they look at you with their eyes and with a glare, they seem to control and override the very heart and mind of the matter. Unless you want, don't even stay for a second. The space that awareness of heart and make you anxious, energy, and temperature. Avaaz, Niche! Niche!

0: Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैशबैक एज माय क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
3: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
3: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
4: हमने लगा और हो जा रिचार्ज ऑलिव रिचार्ज
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
4: ऑलिव रिचार्ज
5: इन एसोसिएशन विद
6: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
8: Commercial Bank, where saving more turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: Tanisha.
1: भाई देखो फुल वीकेंड वाली वाइब तो है इस गाने में, है ना। सुखविंदर सिंह साहब की आवाज में मीनाक्षी मूवी से चिनमा चिलकम, आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग दैट राइट और नॉट, बट मस्त गाना है, सुन के मजा आ जाता है। तनिषा के साथ यहाँ रेडियो ऑल 106.3 एफएम पर ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और वक्त हो चुका है मेरे जाने का मेरी जान। मिलते हैं सैटरडे दोपहर 2 बजे, वीकेंड आ गया है, बढ़िया तरीके से इंजॉय कीजिएगा, जो भी डिसाइड किया करने का करो मस्त, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, हम हफ्ते में ले लेंगे ना आगे, अभी वीकेंड का हम इंतजार करते हैं, तो इसे हमें फुल ऑन एंजॉय करना है। एंड मेक श्योर कि आप अपने लिए वक्त जरूर निकालें, ठीक है। अपने साथ बैठना ना, खुद को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, हाँ, हम भागते हैं इस चीज से, डोंट डू दैट। प्लीज सिट विद योर सेल्फ, यू नो, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने साथ थोड़ी बातें कीजिए, अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, फिर जिंदगी अलग होगी यार, सच कह रही हूँ मैं। बाकी बढ़िया तरीके से अपना वीकेंड स्पेंड कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान। ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जी बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

देखो जी, आज तो माहौल और भी तगड़ा सेट होने वाला है क्योंकि दिन भी तगड़ा है। हैप्पी वीकेंड है जी। और 4 घंटे बेबी अपने ही होने वाले हैं। और मैं आपको पहले भी बताती हूँ, अब भी बता रही हूँ कि पूरी अटेंशन मुझे ही मिलनी चाहिए। जब तक आप जो भी कर रहे हो करते रहो, रेडियो जो है वो आपका ऑन होना चाहिए, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए काम तो इजी कर ही दिया है। अगर आप अपनी गाड़ी में बैठ के नहीं सुन सकते, आपको गाड़ी से बाहर भी निकलना है, तो रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन, जहां जहां पे आप जाते हैं आपका फोन तो जाता ही है। फोन के अंदर एक एप्लीकेशन है जिसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो दोस्त कर लो यार। कैसा रहा आपका आज का दिन वो भी बताइएगा। 3311106 पर

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: ये तो हर हफ्ते होता है और हर हफ्ते पूछूंगी भी। आपके साथ जबरदस्त इवनिंग्स में आज वीकेंड है, वीकेंड वाली नाइट है। क्या प्लान है आपके, क्या करने वाले हो? देखो यार, मेरा फ्राइडे का कल मैं तो सोऊंगी यार, अपना मन पसंदीदा अपना व्हाइट सॉस पास्ता जो है कुक करने वाली हूँ। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत अर्जेंटली कोई बाहर मुझे बुलाए कि मिलना ही मिलना है, वो पता नहीं है, मैं ना भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं मेरा फोन D&D पे रखती होती हूँ। फ्राइडे को मेरा नहीं मन करता यार उठने का, अपनी बॉडी को पूरा रिकवर करना होता है हफ्ते भर के लिए और रेस्ट करना होता है। बट यू नेवर नो, बट आज का दिन डेफिनेटली आई विल गो आउट एंड कुछ ना कुछ तो करेंगे, फन करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन आपका क्या प्लान है आप मुझे बताइए। 3311063 पर हैप्पी वीकेंड चक्को बट्टे।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete your

अब जब बात वीकेंड की हो रही है, बाहर निकलने की हो रही है, प्लानिंग की हो रही है, तुम मौसम को देख के प्लान करना है। मौसम आपके, सुनो, मौसम आपके, सुनो। आई साहब, मौसम ने तो अगिया ही लगा दिया यार। खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बट या कदर भी ना, एक चीज का आराम है कि गर्मी अगर बाहर बहुत ज्यादा है तो हमारे पास, मतलब चलो हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हाँ अंदर बैठे रह सकते हैं एसी के अंदर, है ना। घूमना फिरना है तो भी हम मॉल वगैरह में जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें ओपन में एसी में हम जो है वो घूम सकते हैं। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम है 29 डिग्री सेल्सियस। विंड जो है 21 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी जो है वो 10% है। सो ये है मौसम के हाल। अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। बाहर घूमना है वो भी एयर कंडीशन एरियाज आपको मिल जाएंगे तो भी कर सकते हैं, अंदर अंदर रहना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी पीना बहुत जरूरी है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

इतनी क्यूट वीडियो जो थी ना आज मैंने देखी, सिमरन कौर आपके साथ। वीडियो ये थी कि एनिवर्सरी पे दो ब्रदर्स ने अपनी सिस्टर को 50 लाख का घर दिया। ओ माय गॉड, इतनी इमोशनल वीडियो थी। उनकी बहन ऐसे भाइयों के गले लग के जोर जोर से रो रही थी। एंड कितना होता है ना कि जब आप कि फैमिली के लिए आप कुछ करते हो, एक तो आपको प्राउड फील होता है और आपकी फैमिली आपके ऊपर प्राउड फील करती है और आप इमोशनल भी हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रिश्ता जो होता है ना वो आपका आपकी फैमिली के साथ होता है। उसके बाद तो ऑफकोर्स आपके दोस्त भी आते हैं, है ना। बट यस, ये वीडियो ने एक्चुअली मुझे काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया। मेरे भाई के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने वाला है। मैं वीडियो भेज दूंगी मैं उसको। क्या होता है कि आजकल रील्स का ये सीन होता है कि अगर आपको आपके दोस्त से कुछ चाहिए कि वो आपको बाहर खाने पे लेके जाए या फिर उसकी उसके नखरे सही या कोई तमन्ना पूरी करे तो आप रील भेज देते हो। मैं अपने भाई को भी ऐसी चीज़ें भेजती रहती हूँ, अपनी दीदी को भी भेजती रहती हूँ कि अटेंशन अगर तुम मुझे नहीं दे रहे हो तो ये रील देखो, आपको मेरी याद आएगी। सिमरन कौर आपके साथ।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio
1: Olive. I'm a number one. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: द बिग बिग बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. यस, जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. ऑफर वैलिड अंटिल 13th जून 2026 ओनली. हरी
3: जोयालिकास, वर्ल्ड्स फेवरेट ज्वेलर.
4: हाय, मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ.
0: Zabardast evening, make you drive golden with.
1: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes R Us. We come.

0: Radio Olive, your happiness frequency. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete your home.

0: जी मैं हाँ हरभजन मान तुसी सुन रहे हो कतर हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: नया लुक नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग, विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
1: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
0: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो, कारफोर, शॉप बेटर, सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
0: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
0: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: जल्दी है क्या 9 से 12 बेबी अरे बेबी चली जा आज तो वीकेंड है यार कोई टेंशन नहीं है मैं जी सुनियो कितना की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ देखो यार इतने सारे वायरल ट्रेंड आते हैं एक और वायरल ट्रेंड है
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये वायरल ट्रेंड ऐसा है कुछ जिसमें बिस्कॉफ रहता है ना पहले बिस्कॉफ का चीज केक वाला चला था लोग जो था वो उसमें जो क्या कहते हैं अपना योगर्ट और ग्रीक योगर्ट के साथ उसको बना रहे थे चीज केक टाइप्स अभी उसी बिस्कॉफ के ऊपर बड़ा सा चीज स्लाइस रख के बड़ा दूसरे वाला जो हार्ड एक चीज रहता है ना उसको रख के वो खा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बड़ा स्वाद लग रहा है भाई कुछ भी चलता है यार इनका इनका बस चले ना तो ये वाटरमेलन के ऊपर अंडा डाल के खा लें यार कितना गंदा लगेगा यार अच्छा चलता सिमरन गौरी आपके साथ जियो बिंदास मैं नहीं जा रही मैं 9 बजे तक हूँ यहाँ पे मेरे

0: हाँ जी, देखते देखते पंजाब और मुंबई का मैच चल रहा है। पंजाब ने पहले खेलते हुए 201 रन का जो है वो टारगेट दिया है। मुंबई अभी खेल रही है और पहला ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और आने वाले गानों में से हंगामा करे थोड़ा। रेडियो ऑलिव कोर कहते रहिए जियो बिंदास।
1: T20 Score Update Presented by
2: Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dada ki most love kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Global K site. Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
5: जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
8: आरजे सिमरन के साथ
9: जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
10: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
11: Supported by Homes Are Us, we complete.

हाँ जी, महबूब का तड़पना तो बनता है। जेन जी डिकोडेड में आज का वर्ड जो स्टैशिंग। स्टैशिंग का मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर को छुपा के रखते हैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से। सो या जेन जी जो है इस वर्ड को इस चीज के लिए यूज करते हैं। सो या ये जेन जी डेटिंग टर्म है एक्चुअली, जो कि क्या फायदा यार, अगर आपका पार्टनर है और आप उसको फैमिली और फ्रेंड से छिपा के रख रहे हैं। चलो फ्रेंड से भी कौन छिपाता है यार, चलो ठीक है नजर का टेंशन है, लेकिन फैमिली को तो बताओ यार अपने पार्टनर के बारे में। क्या ही बात है यार।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर टीएनसी अप्लाई
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes R Us. We complete your home.

पंजाबी फैंस जो है पंगड़ा डाल रहे हैं स्टेडियम में, लाइव मैच देख रही हूँ। 7:31 हो चुके हैं, पंजाब एंड मुंबई का मैच चल रहा है। पंजाब ने पहले खेलते 201 रन का टारगेट दिया है, मुंबई अभी खेल रही है 6.3 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्कोर हो गया है 61। एक विकेट जो है जा चुका है, यानी कि 81 बॉल्स पे 140 रन जो है वो जीतने के लिए जो है वो इनको चाहिए। बिल्कुल, इनके प्लेयर को भी ऐसे ही हो रहा है कि यार धक धक हो रहा है, क्योंकि मैच की सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी ही है। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो?

0: रेडियो ऑन एयर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Supported by Homes Are Us. We complete

0: गाना तोड़ मेरी मम्मा बड़ी गाती थी यार ये गाना, ये पुराना गाना है जो कि ऐड किया गया इसमें। कौन कौन है अंबर सर तो? अमृत सर को अंबर सर भी बोल देते हैं। 7:50, 28 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके। क्विकली मैं अगर आपको मैच की अपडेट बताऊं, पंजाब ने पहले खेलते हुए 201 रन का टारगेट दिया है और मुंबई जो है वो कोशिश कर रही है कि भाई जीत जाए। 63 बॉल्स में 113 रन चाहिए, 3 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं। सो या ये है मैच का हाल। और
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: बोलते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे पैर पे पैर रख के बैठ जाते हैं कि जो होगा देखा। लेकिन जब वो होता है ना तो कभी कभी आपसे देखा नहीं जाता। सो एक्ट रिस्पॉन्सिबली। जो चीज नॉर्मल है, जो कि आप अगर हो गया वो चीज और उसको आप देख पाओ तो आपको दुख ना हो, लेकिन ऐसी भारी भरकम चीजों के लिए जो कि अगर हो गई तो आपसे देखा नहीं गया तो फिर बाद में दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये हर कंडीशंस इसमें अप्लाई होती है कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। बॉन्ड तो सब बने हुए घूमते हैं, डर तो किसी को भी नहीं लगता, लेकिन जब ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, फिर नहीं देखा गया तो फिर क्यों टेंशन लेनी है यार। मतलब करो जो चीज करना चाहते हो, अपना दम लगाओ, पूरा जोर लगाओ, उसके बाद ना हुई तो आपको कम से कम ये तो नहीं होगा यार कोशिश ही नहीं की थी। सो परेशान होने की जरूरत नहीं, इट्स वीकेंड, वैसे भी एंजॉय करो, हैव फन यार।

0: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: This is Amaya Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Geo Vindas.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: भाई साहब दोस्ती हो तो ऐसी आपके साथ। सो 28 साल पहले दो दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया था कि दोनों में से अगर किसी की भी लॉटरी लगी ना तो उसका जो अमाउंट रहेगा ना तो हम दोनों में बंटने वाला। तो 28 साल बाद उसके एक दोस्त की $22 मिलियन की लॉटरी लगी और उसने अपने दोस्त के साथ पैसा बांटा। क्या बात है, ये वाली बात मैंने अपने दोस्त से शेयर की। मैंने बोला सीख कुछ ऐसे कर दिया उसने, क्या ही करना था यार। बट जोक्स अपार्ट, बट कितनी सही बात है यार, बंदा अपने वादे का पक्का निकला। दोस्ती एक बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, बट या वो ऐसी होनी चाहिए कि यार उसमें कोई जलेस, कोई ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जलेस वो प्यार वाली जलेस तो होती है, लेकिन उसकी तरक्की से जलेस नहीं होनी चाहिए। और जब आपके पास इतना कुछ आ जाए तो सामने वाले के लिए आपके दिल में कुछ रहे ही ना, ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, है ना। टाइम पास वाली नहीं होनी चाहिए, ये तो बड़ी क्यूट दोस्ती है यार। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Cool song.

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Gio
1: Bindas. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes R Us, we complete.

अच्छा मुझे अपने आप सच्ची सच्ची बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो कि रात को स्नोर करते हैं? अब ये मत बोलना यार हमको नहीं पता है कि हम जो है वो स्नोर करते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि वो स्नोर करते हैं। बहुत साल पहले मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, बेटा तू स्नोर करती है पर इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, जब मैं थकी होती हूँ तब मैं स्नोर करती हूँ, है ना। अब मैं स्नोर की बात किस लिए बोल रही हूँ कि जो शादीशुदा लोग हैं ना उनके बारे में एक डेटा जो है वो ये शो करता है कि ये जो लड़के लोग स्नोर करते हैं उसकी वजह से विमेन का जो दिमाग है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स यानी कि 4 साल की स्लीप जो है वो अपने लाइफ टाइम की वो गवा देता है, क्योंकि स्नोरिंग की वजह से नींद ही नहीं आती है। तो इसमें ये सीन होता है कि जो पहले सो गया भाई उसको नींद आ जाएगी अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों स्नोर करते हैं। तो स्नोरिंग वाकई में एक मसला तो है, बट कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर को दिखा भी देना चाहिए, अगर ऐसा इशू आप फेस कर रहे हैं तो। अगर अकेले हैं तो कोई नहीं सुन रहा आपका स्नोर मेरे जैसे। सिमरन कौर आपके साथ, जी हो बिंदास।

हां जी मैं कहि सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुहाडे नाल और हैप्पी वीकेंड गाइस। अब सिमरन कौर के यहाँ से गल्टी मारने का टाइम आ चुका है। बड़े एक बात आया आपके साथ कि कल शाम को नहीं, अरे यार कल तो फ्राइडे, कल तो मैं सोने वाली हूँ, परसों यानी कि सैटरडे शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी वानी पीते रहिएगा और ओवर ईटिंग मत कर लीजिएगा ओवर थिंकिंग के साथ, वो भी नहीं करना है। ओवर कुछ भी अच्छा नहीं होता लाइफ में, ओके। खाने पीने रो, ऐश कर दे रो, चेहरे दे वड्डे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

0: रेडियो ऑन एयर योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।
1: नया लुक नया फील, कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश। अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज, मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस।
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज।
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो। कारफोर, शॉप बेटर सेव मोर। टीएनसी अप्लाई।

0: Club Olive. Club on Radio. 6.3 FM.
1: नया लुक नया फील कारफोर विलाजियो आ गया है और भी फ्रेश अब शॉपिंग होगी और भी इजी और भी एक्साइटिंग विद मोर सर्विसेज मोर सेविंग्स और पूरी फैमिली के लिए बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस
2: 14 से 16 मई तक विलाजियो स्टोर में शॉपिंग करो और पाओ 10% कैश बैक एज माई क्लब पॉइंट्स ऑन एवरी परचेज
1: तो आज ही विजिट करो कारफोर विलाजियो कारफोर शॉप बेटर सेव मोर TNC अप्लाई
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: रेडियो ओलिव 106.3 FM यू आर लिसनिंग टू क्लब

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

Hear this. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

6.3 FM. You're listening to Club Olive.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: ऑफिस बॉय तो हर रोज कॉफी पिलाता है, एक बार उसे पिलाकर देखिए।
1: जनाब, आपको हैप्पीनेस ना मिले तो कहना,
0: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: चांदनी रातें।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: चांदनी रातें।
1: ये मेरा पहला गाना है बॉलीवुड में। दिस इज कंपोज्ड बाय मिथुन शर्मा, लाइक लिटरली माय फर्स्ट सॉन्ग इन द इंडस्ट्री एज अ प्लेबैक सिंगर।